रहता तो है इंसान सिर्फ एक ही कमरे में, बाकी बड़े से घर में तो उसका अभिमान ही रहता है। चल तो सकता है इंसान किसी छोटी सी कार में भी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो उसका अहंकार ही चलता है। भर तो जाता है पेट सिर्फ दो वक्त की रोटियों से ही, भर तो जाता है पेट सिर्फ दो वक्त की रोटियों से ही, 56 व्यंजनों से तो उसका वजन ही बढ़ता है। ललक लालसा और हर समय कुछ पाने की चाह में, ललक लालसा और हर समय कुछ पाने की चाह में, सब कुछ यहीं बच जाता है, बस आखिरी में इंसान नहीं बचता है। 5:30 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

छोटी छोटी खुशियों में खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इस बात की ही खुशी मनाइए। कोई बड़ा गम नहीं है, इस बात की ही खुशी मनाइए। गम ए दुनिया में कितने हैं गमगीन यहाँ पर, विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 5:41 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।

5:46 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना।

0: FM Rainbow 101.9।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर दिल के गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां आज मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति लेकर आ गई हूं एक और फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। और मैं जो फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस लेकर आई हूं उसमें बहुत सारी बातें हैं, या ऑफ कोर्स प्रीति का पिटारा, पी का पी, प्रीति का पिटारा तो है ही। और उसी पिटारे से शुरुआत करते हुए पहले, सबसे पहले तो आप सभी का पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और भाई एज यूजुअल ज्ञानचंद जी का ज्ञान, जिसके बिना तो हमारे शो की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो अभी ना आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही प्यारा सा चल रहा है, कभी बारिश, कभी हल्की सी धूप, कभी वो सौंधी सौंधी बारिश के कारण वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू। तो ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि देखिए ज्ञानचंद जी, मौसम कितना हसीन है, आपका क्या प्लान है? इस पर पता है ज्ञानचंद जी ने क्या कहा? ज्ञानचंद जी ने कहा, श्रीमती जी, मेरा तो बस वही प्लान है 178 में 1 GB 28 डेज के लिए। अब ये जो उनके मोड़ की वाट लगी है श्रीमती जी के, उसके बाद में ज्ञानचंद जी का क्या हुआ होगा ये मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो ऑफ कोर्स जोड़े ही जानते हैं। प्यारा सा मौसम, इतनी प्यारी बात उन्होंने कही, तो इस बात पर चलिए, भले ही ज्ञानचंद जी ने उनके मूड की वाट लगा दी हो, लेकिन लेकिन लेकिन हम आपके मूड की वाट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हम आप ही में से आपकी फरमाइशें आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिएगा रेनबो एफएम 101.9 पर आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर पुनः एक बार आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज मैं आपके धड़कन पर जीती आरजे प्रीति जो पी का पी यानी कि प्रीति का पीटा लेकर आया आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। तो चलिए उसी और आगे बढ़ते हैं। एक बार ना जूनियर ज्ञानचंद जी, अब वो भी अब जूनियर ज्ञानचंद जी है तो आप समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी के होंगे। हाँ तो श्रीमती ज्ञानचंद जी ने पूछा कि बेटा रोटी खाएगा, तो जूनियर ने कहा कि नहीं। इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने पूछा कि बेटा बिस्कुट खाएगा, तो कहा नहीं। फल खाएगा, तो कहा नहीं। तो इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बस बिल्कुल अपने बाप पे गया है, कुछ नहीं बस जूते ही खाएगा। भाई अब आप जो है श्रीमती ज्ञानचंद जी की मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। खैर उनकी बात तो छोड़िए, हम बाद में करेंगे। लेकिन जूते से भाई याद आया फुटवियर, फुटवियर जी हाँ, मानसून फुटवियर। भाई साथियों मानसून आ गया है और ऐसे में अपने फुटवियर

का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि फिसलन का डर, यदि पैर गीले होए, पैर गीले में यदि ज़्यादा देर रहे तो इन्फेक्शन का डर। तो यदि आप इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस मॉनसून में फुटवियर खरीदते समय ये ध्यान रखें कि वो मजबूत ग्रिप वाला हो और सोल जो है वो एंटी स्लिप अवश्य हो। इसके अलावा केवल फैशन को प्राथमिकता ना देते हुए साथियों ऐसा फुटवियर चुने जो पैरों को आराम दे, क्योंकि इस मौसम में पैरों के वेंटिलेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फुटवियर ज्यादा हैवी ना हो, क्योंकि इसे चलने में परेशानी हो सकती है, और ये अवश्य देखें कि वो जल्दी से जल्दी सूखने वाली सामग्री का बना हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इस मॉनसून में वाटरप्रूफ स्नीकर्स, क्लॉग्स, रबर सैंडल आदि आज के युवाओं के साथ सभी की पसंद बने हुए हैं। और जब आप ये फुटवियर, जी हाँ मॉनसून का स्पेशल फुटवियर पहन के जब आप निकलेंगे तो भाई आपको शायद यही सॉन्ग हर जगह सुनने को मिले। यस, आज फिर कितने चली है मोरनी बनके।

0: ಹೇಳಕ್ಕೆ.
1: FM Rainbow 101.9 और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहां मैं पी का पी यानी कि जो प्रीति का पिटारा लेकर आए उसमें आगे बढ़ूं. तो एक दिन ना ज्ञानचंद जी ने अपनी छाती पर एक बड़े से शेर का टैटू बनवाया और घर जाकर श्रीमती जी से बोले कि श्रीमती जी देखिए मैंने अपनी छाती पर शेर बनवाया है.

आखिर मैं भी तो इस घर का शेर हूं। इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने 2 सेकंड जो है टैटू को घूर कर देखा, फिर रसोई से बेलन लेकर आते हुए बोली कि समझ गए ना, आपको तो पता ही है क्या बोला होगा। जी हाँ, बेलन लेकर आते हुए बोली कि ज्ञानचंद जी, गलत फहमी में मत रहिए, पिंजरा चाहे कितना भी मजबूत हो, सर्कस का शेर रिंग मास्टर के इशारों पर ही नाचता है। जाइए, जाके चुपचाप घर का पोंछा लगाइए। भाई साथियों, अब उनके टैटू का क्या हुआ ये तो मुझे आपसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो ऑफ कोर्स जोड़े ही जानते हैं। तो वैसे आज ना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, और अक्सर युवाओं का खास शौक होता है टैटू। पर क्या टैटू मात्र एक डिजाइन है? जब कोई अपने शरीर पर साथियों टैटू बनवाते हैं, तब टैटू बनाने वाली मशीन की सुइयां जो होती हैं, वो त्वचा की पहली परत को छेद कर दूसरी परत यानी कि डर्मिस तक पहुंचती हैं, और यहीं पर इंजेक्ट होती है इंक। यहीं से शुरू होती है आपके शरीर और टैटू के बीच की एक साइलेंट फाइट। जी हाँ, एक साइलेंट सी लड़ाई। जैसे ही इंक अंदर जाती है, शरीर का इम्यून सिस्टम एक जो है इसे एक फॉरन अटैक समझता है, यानी कि बाहरी शक्तियों का अटैक समझता है, और तुरंत भेजता है अपने सोल्जर्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को। अब ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो इंक के पार्टिकल्स को पकड़कर उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। टैटू इंक के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये सेल्स उन्हें पूरी तरह से तोड़ नहीं पाते हैं। कुछ इंक पार्टिकल्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्किन में फंस जाते हैं। फिर आते हैं मैक्रोफेजेस। ये इंक को निगल लेते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब ये सेल्स मरते हैं, तो वे इंक फिर से बाहर निकल जाती है और दूसरे सेल्स फिर उसे पकड़ लेते हैं। मतलब कि ये प्रोसेस बार बार बार बार रिपीट होता रहता है। इसी वजह से टैटू स्किन में ट्रैप होकर रह जाता है, और जब स्किन हील हो जाती है, तब ये इंक परमानेंटली वहीं सील हो जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्किन सदा उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है, बस वो कभी जीत नहीं पाती है। तो साथियों, आपका टैटू सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि ये शरीर और इंक के बीच चल रही एक एंडलेस फाइट है। जी हाँ, और भाई फाइट तो है, अब आप सोच समझ के टैटू बनवाइएगा। लेकिन फिलहाल मैं मैसेजेस की ओर भी बढ़ती हूँ। एयरपोर्ट से विष्णु यादव जी ने मैसेज भेजा है, और एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गीत वो मुझे डेडिकेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Hey, very hungry. What's special today?
2: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
1: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
3: And where do we taste all these?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
4: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
0: FM Rainbow 101.9
5: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ और मैं जो पी का पी यानी कि प्रीति का पीटा लेकर आई हूँ उसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ना ज्ञानचंद जी के होठ जल गए थे तो मैंने पूछा ये क्या हुआ ज्ञानचंद जी आपके होठ कैसे जल गए तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी श्रीमती ज्ञानचंद जी के चक्कर में जल गए तो मैंने पूछा उनके चक्कर में तो बोले हाँ उनको ना छोड़ने गया था मायके के लिए और जब उनको बाय बोलने की बजाय खुशी में ना इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि उनको चूमने की बजाय ट्रेन के इंजन को ही मैंने चूम लिया। अब फिर देखिए वो खुशी का ठिकाना तो भाई आप लोग ज्यादा जानते हैं ना क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। भाई साथियों जब बात ट्रेन की चली है तो एक बात मुझे ध्यान आई, क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रेन जो है वो मोड़ पर यानी कि टर्निंग पर बिना फिसले कैसे मुड़ जाती है? क्योंकि पता है आपको, नहीं पता है तो चलिए

छोटे से दिमाग को बड़ा सा प्रेशर मत दीजिए, मैं हूं ना। साथियों, ट्रेन के पहिए कार के पहियों की तरह ना अलग अलग नहीं घूमते हैं। ट्रेन के दोनों पहिए एक ही एक्सल से जुड़े होते हैं और हमेशा एक ही गति से घूमते हैं। फिर सवाल है कि जब मोड़ आता है तब बाहर वाला पहिया ज्यादा दूरी कैसे तय करता है। इसका जवाब छुपा है ट्रेन के पहियों के खास डिजाइन में। साथियों, यदि आप ट्रेन के पहियों को ध्यान से देखें ना, तो वो पूरी तरह से सीधे या बेलनाकार नहीं होते। उनकी सतह एक हल्की शंकुकार जैसी होती है। यही छोटा सा डिजाइन जो है वो ट्रेन को पटरी के बीच में बनाए रखने के लिए सहायता करता है। यदि ट्रेन थोड़ा एक तरफ खिसक जाए तो दोनों पहियों में संपर्क बिंदु बदल जाते हैं। एक पहिया बड़े व्यास वाले हिस्से पर चलने लगता है, जबकि दूसरा जो छोटे व्यास वाले हिस्से पर। इससे दोनों पहियों द्वारा तय की जाने वाली दूरी में फर्क आ जाता है और ट्रेन अपने आप वापस पटरी के बीच में आ जाती है। ये तो हुई साधारण जगह की बात, पर मोड़ का क्या? असली कमाल तो मोड़ पर ही होता है, जो कि हम जानेंगे इस कमाल के गीत के बाद। जी हाँ साथियों, स्टे ट्यून। जब बात ट्रेन की चल रही है तो हो जाए इंजन की सीटिंग।

तो साथियों इंजन की सीटी के साथ में आपका भी बम डोल रहा है, तो भाई आराम से डांस कीजिएगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यस, क्योंकि लाइफ में इतना फन तो होना ही चाहिए। और जहां तक गीतों की बात है तो साथियों, यदि आप अपना कोई पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: साथियों आकाश वाणी के उसी एफएम रेडियो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और इस प्यारे से गीत अंजन की सिटी के पहले हम आपसे यही पूछ रहे थे कि क्या आपने कभी विचार किया है कि ट्रेन बिना गिरे जो है अपने आप आसानी से मुड़ कैसे जाती है टर्निंग पर। तो साथियों मोड़, जी हाँ, मैंने आपको साधारण गति से जब चलती है उसके बारे में तो बताया, पर मोड़ जब मैंने आपको बताया कि असल कमाल तो मोड़ पर ही होता है। तो साथियों जब ट्रेन किसी मोड़ में प्रवेश करती है यानी कि टर्निंग पर होती है तो वो हल्का सा बाहरी रेल की ओर खिसकती है। इस समय बाहरी पहिया अपने बड़े व्यास वाले हिस्से पर चलता है जबकि अंदर वाला पहिया छोटे व्यास वाले हिस्से पर। दोनों पहिए एक ही गति से घूम रहे होते हैं परंतु बड़े व्यास वाला पहिया एक चक्कर में ज्यादा दूरी तय करता है। समझ में आया? यही वजह है कि ट्रेन बिना फिसले अतिरिक्त गियर के बिना पहियों को अलग अलग घुमाए आसानी से मोड़ पार कर लेती है। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में कॉनिसिटी ऑफ व्हील्स, जी हाँ, कॉनिसिटी ऑफ व्हील्स या फिर पहियों का शंक्वाकार होना कहा जाता है। दोस्तों ट्रेन का पहिया दिखने में जितना साधारण लगता है ना उसके पीछे उतनी ही शानदार इंजीनियरिंग भी छुपी हुई है ना। तो ऐसी और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा में। फिलहाल जब गड्डी के मोड़ की बात चल रही है तो चलिए देखते हैं यहाँ कौन सा मोड़ चल रहा है।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पी का पी यानी कि प्रीति के पिटारे में एक दिन ना घर पर पूजा थी तो श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ज्ञानचंद जी से पूछा कि सुनिए जी आपको वो आरती याद है ना। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि हाँ वो पतली सी काली आंखों वाली सुंदर सी वही ना। इस पर श्रीमती जी ने पहले पति की पूजा की और फिर भगवान।

की। अब आप समझ सकते हैं कि श्रीमती ज्ञानचंद जी कौन सी पूजा की आरती वाली बात कर रही थी, और श्री ज्ञानचंद जी जो है अपने ज्ञान में डूबे हुए कौन सी आरती की बात कर रहे थे। चलिए, ये आरती पूजा वाली बात से मुझे एक बात याद आई कि पूजा में जलने वाला कपूर कैसे बनता है, कभी सोचा है आपने? देखिए, पूजा में जो कपूर जलता है वो कुछ ही सेकेंड

खास पेड़ से प्राप्त होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है सिनामोमम कैम्फोरा यानी कैम्फर ट्री। ये पेड़ चीन, जापान और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इस पेड़ की लकड़ी और पत्तियों में प्राकृतिक रूप से कपूर मौजूद होता है। जब पेड़ और उसके हिस्से उपयुक्त अवस्था में होते हैं तो लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है। इसके बाद आती है भाप की बारी। अब उसमें क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी इस प्यारे से गीत के बाद। जी हाँ, द बॉन्डिंग सॉन्ग, क्योंकि भाई वैसे तो ज्ञानचंद जी और श्रीमती ज्ञानचंद जी कितना ही लड़ ले बट जो बॉन्डिंग होती है वो अपने आप ही जो है समझ आ जाती है ना। वैसे यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

0: रेनबो 101.9
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहां पर इस गीत को सुनाने से पहले मैंने आपसे बताया था कि कपूर जो होता है वो कैसे बनता है। तो लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है, उसके बाद में भाप की बारी आती है जो मैंने आपसे बताया था। तो अब लकड़ी को स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि भाप आसवन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। गर्म भाप लकड़ी में मौजूद कपूर को वाष्प के रूप में यानी कि भाप के रूप में अपने साथ बाहर निकालती हैं स्टीम के रूप में। फिर इस कपूर युक्त भाप को ठंडा किया जाता है और कपूर सफेद क्रिस्टल के रूप में अलग होने लगता है। इन क्रिस्टलों को शुद्ध करने के बाद उनसे पाउडर या पूजा में इस्तेमाल होने वाले कपूर की गोलियां या बट्टियां जो भी आप कहते हैं वो तैयार की जाती हैं और फिर यह कपूर पहुंचता है आपकी और हमारी पूजा की थाली तक। पूजा की थाली, हाँ बिल्कुल, वो जो ज्ञानचंद जी वाली पूजा या आरती नहीं मैं शुद्ध सात्विक पूजा की थाली की पूजा और आरती की बात कर रही हूँ। लेकिन साथियों यहाँ एक दिलचस्प बात है, बाजार में मिलने वाला हर कपूर प्राकृतिक नहीं होता। जी हाँ, आज कपूर का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर रासायनिक प्रक्रिया से भी किया जाता है। तो अगली बार जब भी कपूर की लौ कुछ ही पलों में गायब हो जाए तो सिर्फ उसकी खुशबू महसूस मत कीजिएगा, याद रखिएगा उस छोटी सी लौ के पीछे प्रकृति और विज्ञान की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। भाई कहानी तो आपकी और हमारी भी है क्योंकि आप अपने पसंदीदा गीत पूछ रहे हैं और हम वही प्ले कर रहे हैं। तो साथियों आप, जी हाँ आपसे कह रही हूँ जो बिल्कुल आप ऐसे मायूस होकर बैठे हैं, नहीं नहीं नहीं मायूस होने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं हूँ ना। तो जब भी आपको मायूसी हो तो आप कोई गीत सुनना चाहते हो बिल्कुल जोश भरा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। स्टे ट्यून, यही हम आपसे कहेंगे जो आप हमसे कहना चाहते हैं।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ और स्टूडियोज की घड़ी में 10:55 और 33:35 जी हाँ 35-36 बस सेकंड्स हो ही चले हैं। तो साथियों आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता है, पर फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ठीक 11 बजे हम आपको ले चलेंगे न्यूज़ हेडलाइंस की और वहाँ पर जाने से पहले आपके पसंदीदा गीत तो आप तक पहुँचा ही रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के बता दें कि यदि आप कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसको डेडिकेट करना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज अपनों तक पहुँचाना चाहते हैं, अपने दिल की बात अपनों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040234822 और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मैसेज भेजा है बाबा नगर से हुदा जी ने, हुदा बाबा नगर से। हाय प्रीति जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, अच्छा लगा भाई आपसे भी इतने समय बाद में बात करके बहुत अच्छा लगा हुदा जी। और एक गीत की फरमाइश आपने की है और साथ ही मैसेज भेजा है नमस्ते प्रीति जी, हैप्पी डे गुड, मेरा नाम है हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल। क्या बात है, हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल जी ने मैसेज भेजा है, वो भी एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं। चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके गीत आप तक पहुंचा दिए जाए। साथियों जैसे मैंने आपको बताया कि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है +91040234822। तो ये हैं हुदा जी, आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रेनबो 101.9
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब बारी एक अहम जानकारी की।
2: ईरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंग दी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई,
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
3: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
2: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
2: It's not just food.
3: It's culture, history and flavor rolled into one.
4: Jashne Hyderabad.

0: रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। आपकी धर्मना परिजीति आरजे प्रीति के साथ और मैसेजेस बहुत सारे मैसेजेस आकर हैं और एक स्पेशल मैसेज आया है श्रीमती एंड श्री पालाकुर्ती उमा रानी और गंगाधर फैमिली की ओर से। वो कह रहे हैं कि उनके बेटे कपिल का विवाह है निशिता जी के संग और कल से उनके जो है विवाह के प्रोग्राम्स चालू हो रहे हैं। वो आपको बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ उमा जी और जो है गंगाधर जी को, और साथ ही इसी फैमिली के लिए अपने दोस्त कपिल के लिए विशेष भेजे हैं। उनके सारे दोस्त जो ज्ञानदीप टावर्स में रहते हैं उनके सारे दोस्त और विशेषतः अंकित जाजू ने यह मैसेज भेजा है और कह रहे हैं कि भाई हमारे दोस्त कपिल को शादी की अग्रिम बधाइयाँ। क्या कहते हैं, खत्म हुए आवारगी के दिन अब जिम्मेदारियों का सहरा होगा। खत्म हुए आवारगी के दिन कपिल अब जिम्मेदारियों का सहरा होगा। दुआ है हमारी तुम्हारी जोड़ी का प्यार सबसे गहरा होगा। क्या बात है, ये मैसेज भेजते हैं अंकित जाजू और श्रावणी जाजू अपने दोस्त कपिल को और निशिता जी को, और साथ ही इनके जो माता पिता हैं वो भी एक प्यारा सा मैसेज भेज रहे हैं। सिर पर सहरा सजेगा, हाथों में रचेगी मेहंदी, खुशियों से भर जाए तुम्हारे जीवन की नई डगरिया। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और साथ ही दोस्तों ने एक प्यारे से गीत की फरमाइश भी की है। वो कह रहे हैं कि वो गीत तो भले ही बद्री की दुल्हनिया फिल्म से पूछ रहे हैं, पर उनका कहना यही है कि कपिल की दुल्हनिया। क्या बात है, क्या बात है। सो बहुत अच्छे, कपिल जी और निशिता जी आपको शादी की अग्रिम बधाइयाँ, और कल से आपके जो शादी के प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं उसके लिए आपको पुनः एक बार ढेर सारी बधाइयाँ। स्टे ट्यून्ड 101.9।

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक दोस्तों, पुनः एक बार आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हेलो रेनबो में, जहां मैं आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक लेकर आई हूं। पर उससे पहले ज्ञानचंद जी का ज्ञान। ऑब्वियसली एक दिन ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा, सारे गेस्ट बैठे थे और श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा उनके सामने कि सुनिए जी, आइए खाना खा लीजिए, दाल चावल आलू मटर जो है बने हैं। इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, मैंने ही तो बनाया है। भाई साथियों, अब मेहमानों के सामने क्या हुआ होगा ये मुझे आपसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। चलिए, अब आपने भी शायद खाना खा लिया होगा, तो खाना खाने के बाद में लौंग और इलायची तो बनती है ना।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर अब बारी हेलो रेनबो की, जहां होगी दिल से दिल की बात। जी हाँ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। तो साथियों, एक साधारण सी बात, हम सुखी हो सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। हमें सुखी या खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्चा होता है और हम वही करते हैं। ऐसे क्यों, इस पर आप अपनी राय हमें बताइएगा। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323481 या फिर 2323482 या फिर साथियों 2970-4715 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2323-0030 2323-4821 या फिर 2970-4715 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी फोन लाइन्स बिजी आ रही हैं तो भाई साथियों, नाराज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर देने का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040-2323-4822। तो साथियों, पुनः आपको बता दूं कि आज हमने आपसे यही पूछा कि एक्चुअली खुश रहने के लिए ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु हम कितने खुश हैं ये दिखाने के लिए हम बहुत खर्चा करते हैं। ऐसे क्यों, क्या हम लोगों के लिए खुश हो रहे हैं? बताइएगा हमें, क्या कहना है आपका। और जब तक आपके फोन्स हम तक पहुंचते हैं, तब तक हम मैसेजेस की और भी बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, बहुत सारे मैसेजेस आकर हैं, पर एक प्यारे से गीत के बाद। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि खुश रहने के लिए बड़ी जेब की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सो टेंशन काहे को लेने का।

0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
1: ఏ నేహా, ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్డ్ గా కనిపిస్తున్నావు.
2: నా చిన్న తమ్ముడున్నాడు, చాలా అల్లరివాడు. కాలేజీలో మార్కుల పత్రం ను ఫోటోషాప్ చేసి నాన్నకు చూపించాడు. నిన్న కరెంటు బిల్లులో సున్నా మొత్తం చూసా. నేననుకున్నా తప్పకుండా ఫోటోషాప్ చేశాడని. లేకపోతే సున్నా కరెంటు బిల్లు ఎలా సాధ్యం? అడిగితే అన్నాడు, అన్నయ్య అంతా పైవాడిదయ్యా, సోలార్ ప్యానెల్ ఉందిగా. నేను చెప్పాను, ఓ అవునా అని. పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి, pmsuryaghar.gov.in.
3: और साथियों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो में आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां दिल से दिल की बात. और आज हमने आपसे यही पूछा कि खुश होने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, पर हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में ज्यादा पैसा हम क्यों खर्च करते हैं. इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है. हेलो रेनबो.
4: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति जी. श्रीनिवास राव मलकपेट है माँ.
3: वेरी वेरी. और श्रीनिवास राव जी ने जितने वेरी कहे उससे एक वेरी हैप्पी आफ्टरनून श्रीनिवास राव जी.
4: आप बहुत दिन के बाद आ रहे हैं. बस एक ज्यादा बोल दे रहे.
3: ऐसा है क्या जी, बताइएगा. बस आपने जब बुलाया तब पहुंच गए.
4: आपका टॉपिक अच्छा है,
3: धन्यवाद.
4: तो एक्चुअली क्या है मैडम, आजकल क्या हुआ, दिखाने का जमाना आ गया है.
3: पर दिखाना किस लिए है श्रीनिवास राव जी? दिखाने का जमाना श्रीनिवास राव जी
4: की बात नहीं.
3: श्रीनिवास राव जी,
4: लोगों को बताने के लिए एक हाथ में जो है सो डाल लेना, ये डाल लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, एक कार खरीद लेना. कार खरीद लेना क्या है, वो क्या आजकल फाइनेंसर है ना, पूरे पूरे फाइनेंस में ले लेना. उन्हें आके खींचने तक, जब तक खींचने को नहीं आता जब तक ये लोग चला लेते हैं. तो ऐसा जो है सो जमाना चल रही है. हम लोगों को बहुत देखते हैं. हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 10 रुपये आए, 10 रुपये कमा रहे, तो तुम 9 रुपये ने 9.5 रुपये खर्च करो, मगर 10-10.5 रुपये 11 रुपये नको खर्च करो. हम आज तक जो है सो अभी भी जो है सो हमारे बच्चे को ये ना, मेरा बच्चा को भी मैं वही बोलता हूँ, अरे कितने दिन में अपन कौन से घर में थे, कैसा खा रहे थे, कैसा ये कर रहे थे, कैसा बच्चा करते, हमारे को अभी इज्जत नहीं है क्या? पैसा है तो जो बताए तो तू, वो कार खरीदे तो अच्छा है क्या, ये पैंट पहनी तो अच्छा है क्या?
3: बेसिकली श्रीनिवास राव जी,
4: कुछ भी नहीं
3: okay.
4: है. तो आप जो है जहाँ तक हो सके कम पैसे में खर्चा करते हुए 4 पैसे बचा लो, तुम्हारे को कभी भी काम
3: आते. बहुत अच्छी बात. तो बेसिकली आपका यही कहना है श्रीनिवास राव जी की दिखावे की दुनिया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, आपका ये कहना है. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं और इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया आप अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो. लगता है कि इन्होंने अपना कॉल कट कर दिया है. अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं. हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
5: मैं बाबा नगर से बात कर रही हूँ. मैं बाबा नगर में पुराने महल्ले में आ गई, खुश हूँ मैं.
3: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी.
5: 30 साल से यहाँ तो आप आए, बाहर आई.
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सराह नवाजी के लिए.
5: दामन में जिसके
3: जी,
5: क्यों ना खुशी से मर जाए,
3: क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए. बहुत खूब, बहुत खूब.
5: हाउ आर यू मैडम?
3: आई एम वेरी मच फाइन आफ्टर लिसनिंग टू यू. बताइए
5: क्या है टॉपिक?

0: टॉपिक हमने यही पूछा है आपसे कि खुश होने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, परंतु हम
1: जी हाँ,
0: कितने खुश हैं ये लोगों को दिखाने में ज्यादा पैसा हम खर्च क्यों
1: नहीं,
0: करते हैं?
1: असली मुस्कुराहट अपने दिल से आना, दिल में से निकलना, जबान पे आना,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छी
1: बनावटी
0: बात।
1: नहीं। हमारे से जो भी मिलते हैं वो पकड़ लेते मेरे को सौंप देने, मालूम छोड़ते नहीं हम बाबा नगर में, तो सुबह निकली
0: बहुत
1: तो शाम हो जाती,
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: छुड़ाई छुड़ाई के
0: मतलब
1: आती हूँ।
0: आप इतनी खुशियां बिखेरती है इसीलिए आपको कोई छोड़ता नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो साथियों, यदि आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 2323-00-30, 2323-48-21 या फिर 2970-4715 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी फोन लाइन बिजी आ रही है तो भाई दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि नाराज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर देने का। जल्दी से अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हम यही नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
2: हेलो रेनबो, प्रीति जी नमस्कार। माँ
0: नमस्कार। नमस्कार రమణయ్య గారు, ఎలా ఉన్నారు?
2: బాగున్నానమ్మా, నీ మాటలు వినక చాలా కొద్ది దెబ్బ తిన్నాము, బాగలేదని బాగలేకుండా ఉండింది, ఇప్పుడు నీ మాట విన్నాక బాగుంది.
0: ఓ థ్యాంక్ యూ సార్, చెప్పండి.
2: ఏమి సరేమ్మా, ఏమమ్మా డబ్బులు కట్టి దుబారా చేయకూడదనే?
0: కాదు, మనము సుఖంలా సుఖంతో ఉండాలంటే చాలా డబ్బులు ఖర్చు చేసే అది అవసరం లేదు, కానీ మనం ఎంత సుఖంలో ఉన్నాను అది మనం చూపించడానికి ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తాము, అట్లా ఎందుకు?
2: అవునమ్మా, అది ఆడంబరాలు చుట్టుకల్సిన అవసరం లే, అది మనము సుఖంగా ఉండాలంటే.
0: అవును, అవసరం లేదు కదా, మళ్ళీ మనం అట్లా ఎందుకు చేస్తాము? మనము సుఖంగా ఉన్నాను అది ఓకే,
2: ఆ విధంగా చేస్తారు, కానీ ఆ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఆడంబరాలు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ప్రశాంతంగా ప్రతి మందిలో కూడా మన వాక్కు, మన వాక్కు బాగుంటే అంతా ప్రశాంతంగా ఉందంటే, వాక్కు మాట ఏదైనా గానీ ప్రశాంత బాగా ఉన్నారంటే మనం ఇబ్బంది లేకుండా ఒకరిని నొప్పించకుండా ఎవరికైనా ఉంటామో అప్పుడు మనం సుఖంగా ఉన్నట్టు లెక్క.
0: సూపర్ సూపర్ రమణయ్య గారు చాలా మంచి మాట చెప్పారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. తో సాథియో, ఇది రమణయ్య జీ జిన్నే అప్ని బాత్ హమారే సాత్ సాజా కి, యది ఆప్ భీ అప్ని బాత్ హమారే సాత్ సాజా కర్నా చాహతే హై తో ఆప్ హమే కాల్ కర్ సక్తే హై. కాల్ కర్నే కే లియే నంబర్స్ హై 2323-00-30, 2323-48-21 ఆర్ 2970-4715 పర్ భీ ఆప్ హమసే సంపర్క్ కర్ సక్తే హై. హలో రెయిన్బో.
3: హలో ప్రీతి జింటా జీ, నమస్కార్.
0: నమస్కార్ నమస్కార్, కైసే ఆప్?
3: बहुत बढ़िया है, आप कैसी है?
0: हम तो बहुत बढ़िया है, तभी तो आए हैं आपके समक्ष.
3: हाँ, समझ में आया. तो आज तो आप तो बहुत एक्टिव दिख रहा है.
0: हम तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं.
3: और आज स्पेशल है दिख रहा है मेरे तो, मैं घोड़े पे चले तो कैसा रहता मेरे को, ऐसा दिख रहा आज तो.
0: भाई हम लेके ही फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आते हैं तो एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा ना प्रभाकर राव जी.
3: थैंक यू वो लेट प्रभाकर राव, याद है वो भी. तो आजकल ये फंक्शनों में उनका स्टेटस दिखाने के लिए, वो भी स्टेटस उनके क्या है माए?
0: नहीं, ये मैं यही मैं आपसे पूछ रहे हैं कि स्टेटस दिखाने के लिए क्यों, किसको दिखाना है और क्यों दिखाना है बेसिकली?
3: उनका रिश्तेदारों में.
0: लेकिन क्यों दिखाना है, दिखाने से क्या हो जाएगा? क्या हम दिखाने से
3: नहीं होती ना, लोग ज्यादा लोगों को पता नहीं होती इनका ने कितना ब्लैक मनी है बोल.
0: ओके, तो
3: ब्लैक मनी है बोल के नहीं मालूम पड़ती ना, इसीलिए मालूम पड़ती है.
0: अच्छा, ब्लैक मनी बताने के लिए ये बात सरासर हम इससे जो है थोड़ा सा असहमत है, क्योंकि ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है कि केवल ब्लैक मनी ही दिखाने के लिए. खैर, हम खुशी दिखाने के लिए खर्चा हो रहा है, बट हमारा आपसे यही कहना है कि भाई वो खर्चा किस लिए. तो खैर, प्रभाकर राव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी बात. और यहाँ पर हम रुकते हैं एक प्यारे से गीत के लिए, और इस गीत की फरमाइश, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस में इन्होंने मैसेज भेजा है. रेडियो शौकीन सर्वर जी ने मैसेज भेजा है, वो भी एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं. और मैसेज भेजा है मुनीर अली जी ने, वो भी एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं. चलिए, हम पूरी फरमाइशें कोशिश करते हैं कि पूरी कर दें, पर फिलहाल आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए. स्टे ट्यून्ड.

0: कॉलोनी
1: विजयनगर कॉलोनी, विजयनगर कॉलोनी से रामाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है रामाचार्य जी आपका।
0: क्या बोल आप सुकम से मनी मनी बोले ना
1: जी,
0: क्या बोलता పులు చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు అర్థమైంది, పులు చూసి నక్క వాత పెట్టుకుంటున్నారు అనా. ఇప్పుడు అందరు ఏం చేస్తుండే డబ్బును వాల్యూ చూసలేరు.
1: అవును,
0: ఎందుకు చూసలేరంటే ఒకరు చూసుకోవడం పక్కింటోడు వాడు పక్కోడు ఒక ఫంక్షన్ హాల్ చేసిన అనుకుని నన్ను చూసి అప్పు చేసి కూడా కొంతమంది ఫంక్షన్ చేస్తున్నామా.
1: అవును,
0: దాని వల్ల ఏమైతే తర్వాత అప్పు చేసిన తర్వాత ఆలోచన చేస్తాడు, ఏమన్నా ఆలోచన చేస్తాడు, అరే వీడు ఖర్చు పెట్టుకున్న తర్వాత బాధపడేది ఎవరు, అప్పు చేసాడు బాధపడుతుంది కాబట్టి. ఇప్పటిలో చాలా మంది చేసి అప్పు చేస్తారు కాబట్టి డబ్బు సుఖం ఉండొచ్చు కానీ వీడి వల్ల ఎవరు ఉంటలేరమ్మా.
1: అవును, అది చాలా మంచి విషయం చెప్పారు రామాచార్య గారు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. తో సాథియో ఏ థే రామాచార్య జీ విజయనగర్ కాలనీ సే, ఆర్ జల్దీ సే అప్నే అగ్లే కాలర్ కి ఓర్ బడతే హై, దేఖతే హై ఉన్కా క్యా కహనా హై. హలో రెయిన్బో.
2: हेलो, हाय प्रीति जी, कैसे हो आप?
1: नमस्कार नमस्कार, आपकी बातें सुनकर तो बहुत अच्छे हो गए, बताइए कैसे हैं आप?
2: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं
1: जी, बताइए.
2: बस अपनी खुशी खुशी नहीं रह रही, दूसरों को दिखाने की चक्कर में हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में हमारी खुशी महंगी पड़ जा रही
1: है. महंगी पड़ जा रही है, बिल्कुल सही कहा हुदा जी.
2: खुश रहा करे, खुश फहमी में नहीं.
1: खुश रहना है, खुश फहमी में नहीं रहना है. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने इन शॉर्ट साझा की हुदा जी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: हेलो ऑफिस.
1: तो साथियों ये थी हुदा जी जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की. यदि आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हेलो रेनबो.
3: हेलो,
1: नमस्कार जी. नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: गुड आफ्टरनून प्रीति जी, मैं गोलकुंडा फोर्ट से मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ.
1: स्वागत है, हैप्पी आफ्टरनून मोहम्मद अफजल जी, कैसे हैं आप?
3: हाँ ठीक है
1: जी, बताइए.
3: तो ये है, मैं बड़े पैसे सरमायादार लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा. जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी वजह दिखावे की ईएमआई के जरिए हासिल मिल जाएगी.
1: नहीं, लेकिन मेरा पूछना यह है कि दिखावा करना ही क्यों है अफजल जी? अपनी खुशी तो जैसे अभी हुदा जी ने कहा कि खुशी तो खुशी है पर वो लोगों को दिखाने के चक्कर में महंगी पड़ जाती है.
3: सामने वाले का मुकाबला कैसा करें? खर्च डाल लेते अभी कोई चीजें खरीदते ईएमआई उससे खरीद,
1: पर मुकाबला करना क्यों है? हम आपसे वही तो पूछना चाह रहे हैं कि करना क्यों है मुकाबला.
3: अब दिखावा बस बताने, अपने को बड़ापन बताने के लिए करते हैं. अब हैदराबाद में जीना, अंदर मट्टी ऊपर चुना है
1: क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं इसीलिए.
3: आजकल के जेंटलमैन जेब खाली मटकते नहीं.
1: क्या बात है.
3: दिखावा करने के लिए हाँ किफायत शादी करना जरूरी है, कंजूसी नहीं करना.
1: नहीं, बात शादी की ही नहीं है. नहीं नहीं अफजल साहब, बात मात्र शादी की नहीं है, मतलब हर जगह की मैं आपको बात बता रही हूँ, बात मात्र शादी की हम कर ही नहीं रहे हैं. हम आपसे यही कंजूसी नहीं करनी चाहिए और वैसे भी खुश रहना, खुश देखिए हम बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश रह सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों में.
3: हमारे माँ बाप भी खुश थे, आपके बड़े लोग अपने खुश थे,
1: खुश थे बिल्कुल थे,
3: तो नहीं करते थे वो.
1: बहुत सही कहा आपने, यही तो हमने आपसे कहा कि खुश रहने के लिए कोई खर्चा करने की ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटे छोटे खर्चे में आदमी खुश हो सकता है.
3: अपने आस पास की छोटी छोटी खुशियां मिल.
1: बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने साझा की अफजल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और साथियों यहीं पर हम अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो. हेलो रेनबो.
4: हरिओम.
1: हरिओम हरिओम, स्वागत है आपका विलास जी, कैसे हैं आप?
4: प्रीति जी मैं बहुत अच्छा हूँ और फिर एक बार आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हर सप्ताह आप कृपा करें.
1: आप जो है मुझसे ये बात मत कहिएगा, आप मुझसे बड़े हैं और प्रार्थना जैसा शब्द आप मेरे लिए मत यूज कीजिएगा, ये उपयोग मत कीजिएगा आप, हम बस कोशिश कर सकते हैं.
4: इच्छा जो है मैंने व्यक्त की है.
1: ठीक है, आपकी इच्छा हमारे अफसरों तक पहुंचा दी जाएगी पर आप जो है इतने भारी भरकम शब्दों से मुझे ना दबाएं प्लीज.
4: ठीक है ठीक है.
1: हाँ जी,
4: तो आज के विषय पर हम बोलना चाहेंगे
1: जी.
4: सुख तो मानने में है, ये जो हमारी प्रवृत्ति है ना उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम सुखी रहते हुए और किसी को बताने की आवश्यकता है क्या, ये हमारे प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करेगा.
1: ओके,
4: हम सुखी हैं. हाँ. लोग देखते हैं, ठीक है वो समझ जाएंगे हम सुखी हैं, लेकिन

0: बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि
1: exactly.
0: मैं सुखी हूँ.
1: बिल्कुल.
0: आजकल तो परिभाषा सुखी रहने की ये हो गई है कि मेरे पास में कार होनी चाहिए, मेरे पास में दुपहिया वाहन भी होना चाहिए,
1: वो
0: मेरे पास में
1: ठीक है मेटेरियलिस्टिक वर्ड जी.
0: तो इसमें आजकल मनुष्य सुख को खोजने लगा है,
1: खोजने लगा है, पर उसमें सुख है नहीं.
0: वही तो वही समस्या है. ये जानने के लिए हर एक व्यक्ति को भगवद गीता का अध्ययन करना है. वो ये समझ जाएगा कि सुख किसमें है.
1: बहुत अच्छे.
0: सुख बताने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता ही नहीं है. अगर जो व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करेगा ना, उसका जीवन इतना सार्थक होगा कि उसको कभी ये सब बताने की करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी.
1: बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने बताई विलास जी. मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि आवश्यकता ही नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. तो साथियों, ये थे विलास जी, और यहाँ पर हम एक प्यारे से मैसेज की और बढ़ते हैं. मैसेज भेजा है, चलिए मैसेज किन्होंने भेजा, इन्होंने अपना नाम शायद लास्ट में मेंशन किया होगा. मैसेज तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा मैसेज लग रहा है. तजुर्बे, तजुर्बे कभी आसानी से नहीं मिलते, इसके लिए ज़िंदगी की सबसे मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है. बहुत सही कहा आपने. और आगे कहते हैं कि जीवन में सुख आए या दुख, दोनों अधिक समय तक नहीं ठहरते, लेकिन धैर्य और विश्वास यदि साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है. बिल्कुल सही. मन से उतरे हुए लोग सामने भी बैठ जाएं तो नजर नहीं आते. बिल्कुल सही कहा आपने. और अंत में आप कहते हैं कि दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं. बहुत खूब, बहुत खूब. और मैसेज भेजा है अश्विन फ्रॉम कोटी. ओके अश्विन जी, कुशाल मार्केट कोटी से ये मैसेज भेजते हैं. जय श्री कृष्णा आपको और सभी हमारे भाई बहनों को, सभी को. बहुत खूब, बहुत खूब. सभी की ओर से आपको भी प्रति अभिवादन. जय श्री कृष्णा अश्विन जी, बहुत अच्छा लगा. और साथ ही आपने गीत की फरमाइश की है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके गीत की फरमाइश पूरी करने के लिए. और यहाँ पर एक विशेष जानकारी आप तक पहुँचा दिए देते हैं. स्टे ट्यून्ड.
2: FM Rainbow 101.9.
3: బ్రో ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
4: ఏ ఇప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పదా హలీం తిందాం.
3: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
4: హలీం ఎక్కడి నుంచో రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
3: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది.
4: ఓ అవునా?
3: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
4: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
3: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
4: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
3: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది జష్నే హైదరాబాద్ ఎట్ 2 PM ఓన్లీ ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
1: और साथियों, आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि खुश रहने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं होता है, पर हम कितने खुश हैं ये लोगों को बताने में हम ज्यादा खर्चा करते हैं, ऐसे क्यों? इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं की ओर बढ़ती हूँ इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो. हेलो रेनबो.
5: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून. आदाब प्रीति जी.
1: नमस्कार, नमस्कार, हैप्पी आफ्टरनून
5: जी. शेर खान बोल.
1: जी हाँ शेर खान साहब, स्वागत है आपका, बताइए.
5: सभी सुनने वाले को भी मेरा प्यार भरा सलाम आदाब. अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, और अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखने की और सबकी सभी के खुशियों में शामिल होने की हिदायत.
1: सद्बुद्धि दे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. हाँ
5: ये प्रीति जी, ये जो चलन चल पड़ा है अपनी खुशियाँ दिखाने के, दिखावा करने के लिए, तो अपनी ये आदतों से मजबूर हो गए हम. कंपटीशन में लगे हुए हैं, और एक तो अहंकार कहा जाएगा, एक तो घमंड तकब्बुर कहा जाएगा कि दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ, दूसरों को दिखाने के लिए दुखी भी नहीं होना चाहिए कि हाँ बार बार रो रहे हैं, इसके सामने रो रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं, और दूसरों को दिखाने जलाने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए. अपनी खुशी, अपना सुख, अपना दुख अपने तक ही रहना चाहिए. हाँ, दूसरों के खुशी में शामिल होके वो खुशी जाहिर करनी चाहिए, दूसरों के दुख में शामिल होके वो दुख जाहिर करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं.

0: ये जो दिखावा चल पड़ा है तो ये
1: वो...
0: क्या है का अंदर का जो हमारी अंतरात्मा है जमीर है ये मैला हो चुका है या कुछ ज्यादा ही सो चुका है या किसी का खत्म ही हो चुका है इसलिए बस ये चलन चल पड़ा है तो इस पे हमको अमल करना जरूरी है।
1: बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने साझा की शेर खान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं इसी नम्र निवेदन के साथ की कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें। हेलो रेनबो।
2: नमस्ते आरजे प्रीति जी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही का करम है, फजल है
1: जी, बताइएगा।
2: खुश रहने के लिए पहले मार्क्स पे मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि जब सुबह उठते हैं तो शुक्र अदा करते ही, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही खुशी मिल जाती है।
1: बहुत सही बहुत
2: और
1: सही।
2: और उसके बाद जब सिलसिले धीरे धीरे धीरे बढ़ते रहता है तो दुनिया की हर चीज को देखो आपकी जिंदगी में खुशी ही खुशी दिखेंगी, क्योंकि आप अपने नेचर को खुश मिजाज रखेंगे तो हर चीज खुशी देंगी।
1: बहुत सही कहा आपने इकबाल जी,
2: रखना पड़ता।
1: हाँ ये सबसे बड़ी
2: तो
1: बात है,
2: खुश मिजाज रखो तो दूसरे को भी आप खुश करने की कैपेसिटी में आ जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
2: अपनी जिंदगी की शान है, अपन तो खुश है मगर दूसरे की खुशी में रुकावट ना बने और दूसरे को खुश करने के लिए जिया, ये जिंदगी की शान है। एक जिम्मेदारी दी है अल्लाह ताला कि दूसरे को खुश करके जियो, ये जिंदगी है।
1: बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: चलो प्यार
1: बांटते चलो, बहुत खूब बहुत अच्छी बात। तो साथियों जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर भी बढ़ते हैं और मैसेज आया है, अश्विन जी ने पुनः मैसेज भेजा है, कहते हैं कि आप आए बाहर आए आपके लिए लिखे फरमाइश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो,
3: कहाँ गायब हो गए, ऐसा गायब हो गए तो कैसा, एक एक महीना तक गायब हो गए तो कैसा आपने?
1: अरे रमेश जी देखिए, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं आपकी धड़कनों पर जीती हूँ आरजे प्रीति हूँ करके, तो गायब कैसे हो सकती हूँ बोला।
3: इतने दिन के बाद आपका मुलाकात हो रहा, देखो ऐसा करना गलत है ना।
1: चलिए जब भी हमें आप दिल से याद करते हैं वहाँ जाता है रमेश जी।
3: आप आए तो हमारा दिल खुश हो जाता है, और इससे बढ़ के और क्या होना।
1: तो बस इसीलिए तो कह रहे हैं कि बस आपके दिल को खुश करने के लिए आ जाते हैं।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, भी बहुत अच्छा है। मैं रमी बात कर रहा हूँ
1: जी।
3: अंदरनी अंदर बागुंदारा अंदर मन उठा, अंदर नव्वुतू उंडारा ఎప్పటికి మన బాధ పెట్టొద్దు మనం బాధపడొద్దు అని నేను అంటాను।
1: చాలా మంచి మాట, అందర్
3: మనం ఎవరు బాధ పెట్టొద్దు, మంచి చేయకున్నా పోలేదు చెడు మాత్రం ఎవరికి
1: చెయ్యకూడదు। చాలా మంచి మాట చెప్పారు రమేష్ గారు, థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. తో సాథియో ఏ తే రమేష్ జీ ఉస్మాన్ గంజ్ సే, ఆర్ జల్దీ సే అప్నే అగ్లే కాలర్ కి ఓర్ బడతే హై, దేఖతే హై ఉన్కా క్యా కహనా హై, ఆర్ ఇసి నమ్ర నివేదన్ కే సాథ్ బడతే హై కి కృపయా అప్నీ బాత్ సంక్షేప్ మే సాజా కరే। హలో రెయిన్బో। నమస్తే
4: జీ, ఐ యామ్ మంగా భాస్కర్ సిటీ।
1: నమస్కార నమస్కార మంగా భాస్కర్ జీ, yes after very very long time, కేసి హై, బహుత్ అచ్చా లగ్ రహా హై ఆప్సే బాత్ కర్కే।
4: హమ్ భీ బహుత్ ఖుషీ హో గయే, దేఖో యహీ బస్ హై, खुशी बोले तो
1: यही बस, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। बहुत सही
4: मिलती है, और हाथ खुल रहे ना दूसरों के लिए आत्मा नहीं, अपन दिल से आत्मा है।
1: बहुत सही बात, बहुत सही बात,
4: दैट
1: इज इम्पोर्टेंट, वेरी ट्रू मंगा भास्कर जी।
4: क्या है अपन को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, वन थिंग पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अपने सोल्जर्स को पहले बिग सैल्यूट,
1: बिग सैल्यूट, वेरी ट्रू, अ बिग सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स।
4: क्यों बोले तो वो लोग दिखाने के लिए नहीं कर रहे,
1: एग्जैक्टली वो लोग दिखाने के लिए नहीं कर रहे, अपने फर्ज के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं,
4: देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों को दिखाने के लिए अपन रेस्पेक्ट देना, एक सैल्यूट देना, बस है उसके लिए,
1: उसमें ही वो खुश हो जाते हैं। देखिए उन सैनिकों को बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस एक प्यार भरा शब्द और एक सैल्यूट उनकी खुशी का, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बहुत सही,
4: बिग सैल्यूट वंदनम आप सोल्जर्स के लिए एक अच्छा गाना
1: चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट एंड वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू आल्सो इन एडवांस। तो साथियों ये थी मंगा भास्कर जी, और अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है।
5: हेलो नमस्ते प्रीति जी।
1: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
5: मैं मुमताज बात कर रही हूँ।
1: मुमताज जी स्वागत है आपका, बताइए कैसी हैं आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे से बहुत दिन के बाद, बहुत टाइम लगा दे रहे आने अब।
1: बस जब बुला रहे हैं तब आ जा रहे हैं
5: आप। आप आ गए तो आसमान में तारा चमके सारी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: है, इतनी इतनी जगह अपने दिल में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस देखिए
1: ओके
0: यही यही खुशी है।
1: हाँ यही कुछ सही बात है, सही बात है। शेर खान भाई को भी दिल तहे से सलाम, उनको भी बहुत बहुत हमेशा दुआओं में याद रखो तो। और
0: जरूर
1: खुशी के बारे में जो है जो प्रीति,
0: जी।
1: हमारे पास है तो औरों को साथ लेके खा खिलाओ खाओ, उनको मदद करो, उनको साथ दो, ये खुश करो, मगर हमारे पास है बल्कि उनको सामने वालों को बता के जलाना
0: दिखाओ
1: नहीं,
0: मत, जलाओ मत, बहुत
1: दिखाओ
0: सही,
1: मत,
0: बहुत सही बात।
1: उनको
0: दिखाओ पे नहीं
1: तकलीफ नहीं
0: जाओ,
1: देना है, दिखाओ पे नहीं
0: बहुत
1: जाना, उनको
0: सही
1: तकलीफ
0: बात नहीं देना है। बहुत सही बात आपने कही
1: देना,
0: मुमताज जी,
1: उनको
0: बहुत
1: साथ खिलाना, उनको सपोर्ट करना, उनको साथ देके खुश
0: साथ
1: करके
0: देके
1: खुश
0: खुश
1: रहना,
0: करना
1: खुश
0: है, अपने साथ खुश करना है,
1: रहना, खुश
0: बल्कि उनको ये
1: रहना,
0: दिखाना नहीं है कि हम कितने खुश हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छी बात आपने साझा की
1: बिल्कुल
0: मुमताज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रेडियो सरवर जी ने मैसेज भेजा है, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, डॉक्टर खान एंड फैमिली निजामबाद से मैसेज करते हैं, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं। और भी मैसेजेस आए हैं, इन्होंने अपना नाम मुनीर अली, मुनीर अली साहब ने एक गीत की फरमाइश की है, और ये जनाब इमरान मोहीउद्दीन साहब एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं, और मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम साझा नहीं किया है। साथियों जब भी आप मैसेज करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम साझा करें ताकि सभी को पता चले, और चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे रिक्वेस्ट प्ले करने की। और समयाभाव के कारण यदि नहीं कर पाए तो क्षमा प्रार्थना भी करते हैं, और जल्दी से अपने
1: और
0: अगले
1: प्रीति
0: कॉलर
1: जी,
0: की ओर बढ़ते हैं।
1: प्रीति जी, मैं
0: हेलो
1: गाना डालो ना प्रीति जी, फ्लावर
0: जी, हम गाने ही तो डालने के
1: इसमें,
0: लिए,
1: फ्लावर इस मूवी में अमिताभ बच्चन गाना है तो क्या
0: चलिए
1: डालो ना, पूछना होगा
0: हम पूरी कोशिश
1: मूवी।
0: करेंगे आपका गीत आप तक पहुंचाने की। और साथ ही यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348 22। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो रेनबो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून प्रीति मैडम जी।
0: हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून।
1: जी जी जी जी मेरा नाम पोली सेठी मेहर बाबा जुबली से बात करूं जी। जी
0: पोनी शेट्टी मेहर बाबा जुबली हिल से स्वागत है आपका, कैसे हैं आप मेहर जी?
1: मैं बहुत अच्छा है जी, मैं अंदा आदमी बहुत अच्छा रहता, कभी भी बहुत खुशी से रहता जी, आपसे बात करे तो और खुशी से रहता जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद इतनी जगह दिल में देने के लिए। लगता है इनका कॉल कट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो रेनबो,
2: हेलो,
0: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी। बबलू
0: जी बबलू बताइए,
2: क्या है वहां से टॉपिक
0: आज का टॉपिक यही है बबलू जी कि हम सुखी हो सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, परंतु हम कितने सुखी हैं ये दिखाने के लिए हम बहुत खर्च करते हैं। हेलो, लगता है इन्होंने अपना कॉल कट कर दिया है, माफी चाहेंगे। यदि आप रेंज में नहीं है बबलू जी तो कृपया प्लीज रेंज में आकर बात करें, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है हम कॉल कट कर दिया है। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो रेनबो, यस इन्होंने भी अपना कॉल कट कर दिया है, लगता है इन्हें भी मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है। चलिए एक और बार कोशिश करते हैं अगले कॉलर की ओर बढ़ने की। हेलो रेनबो,
3: हेलो, नमस्ते मैडम चक्रधर।
0: नमस्कार, नमस्कार चक्रधर जी।
3: इतने साल से आपको फोन में मिलता है, सोच के मैं अभी फोन में मिल गया आपको।
0: चलिए देखिए, आपने इतने सालों से सोचा नहीं मिलेगा लेकिन इमीडिएटली मिल गया, ये खुशी वाली बात है, बताइए।
3: మేడం నేను తెలుగులోనే చెప్తాను,
0: చెప్పండి
3: మీ వాయిస్ వింటి అసలు గాల్లో ఎవరు, మా ట్విన్ సిటీస్ లో ఎవరు నెట్ మీ సిగ్నల్ అందినంత వరకు రేడియోలో ఎవరు కూడా గాల్లో నిలబడడం లేదండి, అందరం హ్యాపీగా ఉంటున్నాం.
0: థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ.
3: ఇదే విషయము 3 ఇయర్స్ బ్యాకే చెప్దాం అనుకున్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ యాంకరింగ్ కానీ మీరు చెప్పే విధానం కానీ, మీరు హ్యాపీగా నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉండడంలో కానీ అవుతనే వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచడంలో కానీ ఎన్నో విషయాల్లో కూడా షేర్ చేసుకుంటూ చాలా చాలా సరిగ్గా చూడలేదేమో కానీ మీరు మాత్రం అంతకంటే బెటర్ దెన్ లేడీ చాలా చాలా గురించి అయిపోయినారు మీరు.
0: థ్యాంక్స్ అలాట్ చక్రధర్ గారు, థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ఇట్,
3: థ్యాంక్ యూ,
0: थैंक यू। तो साथियों ये थे चक्रधर जी जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की, और एक बात हम भी आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं, जुड़े रहिएगा रेनबो एफएम 101.9 के साथ। हेलो रेनबो में,
4: एफएम रेनबो 101.9।
5: हे वेरी हंग्री, व्हाट स्पेशल टुडे?
6: बिरयानी, कबाब्स, हलीम, बट वेट दिस मोर।
5: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
7: And where do we taste all these?
6: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.

0: 9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
2: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
3: FM Rainbow 101.9.
4: और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि खुश रहने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, पर हम कितने खुश हैं ये लोगों को दिखाने में ज़्यादा खर्चा होता है, और हम ऐसा खर्चा क्यों करते हैं, इस पर हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं। और अगले कॉलर की ओर बढ़ रहे हैं इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
5: हेलो प्रीति जी, अच्छे
4: हैं? नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं, बताइएगा।
5: अब इतने बातें करने ना, वो फ्री में आ रहे ना, इतना कुछ है हम
4: बिल्कुल यही तो बताना चाह रहे हैं कि देखिए खुश

0: हेलो प्रीति जी, ऐसे है?
1: नमस्कार नमस्कार जी, आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं, बताइएगा।
0: अब इतने बातें करने ना, वो फ्री में आ रहे ना, इतना कुछ है हम।
1: बिल्कुल यही तो बताना चाह रहे हैं कि देखिए, खुश होने के लिए ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है।
0: वो देखने में पैसा खर्च कर लगते, बाहर वाले को देखने में भी पैसे खर्च कर लगते, वो खुशी नहीं रहते,
1: खुशी नहीं रहती है। जी हाँ, जो हम एक्चुअली बात ये है कि हम कितने खुश हैं, हम सिर्फ ये दिखाने पर ही खर्चा करते हैं। मेरा पूछना ये है कि हम ऐसे क्यों करते हैं?
0: ऐसे करते करते मगर वो खुश नहीं रहते।
1: खुश नहीं रहते हैं, आपका ये कहना है। ओके, हम आपका नाम जानना चाहेंगे, हमारे सभी सुनने वाले आपका नाम जानना चाहेंगे।
0: रघुराम, रघुराम,
1: रघुराम जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका रघुराम जी। और आपने जैसे बताया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: आप आए बाहर आए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी इज्जत देने के लिए।
0: वो सेक्रेटर अभी तक बोले ना?
1: जी हाँ,
0: वो भी हमारा मन में वही सब बात है वो।
1: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद साहब, इतनी जगह अपने दिल में देने के लिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आपकी धड़कनों पर जीती हूँ आरजे प्रीति। बहुत बहुत धन्यवाद रघुराम साहब। और मैसेज भेजा है, नमस्ते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड अ बिग सैल्यूट टू आवर सैक्रिफाइज्ड सोल्जर्स, आर्निका चंदू हैदराबाद। ओके वेलकम। और इन्होंने ये मैसेज भेजा है अपने सोल्जर्स के लिए। और साथ ही साथियों, जो आज हमने विषय रखा है उस पर हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए, खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की, जैसे मैं आपको बताया, कि आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो सकते हैं। मान लीजिए कि आज हम नींद से उठे और सामने एक प्याली गर्म चाय की मिल जाए, यदि आप चाय के शौकीन हैं तो आप खुश हो जाएंगे। आपके घर वाले आपको मुस्कुरा कर ग्रीट करें तो आप खुश हो जाएंगे। वैसे ही आप किसी को अगर मुस्कुरा कर ग्रीट करें तो वो खुश हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ खुशियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम दिखावे के लिए जो खर्चा करते हैं, तो जैसे हमारी हुदा जी ने कहा कि खुशियाँ महंगी पड़ जाती हैं, तो उन महंगी खुशियों की एक्चुअली वो खुशियाँ भी नहीं होती जो हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, पर फिर भी हम करते हैं। तो दिखावा किस लिए हमें करना है? हमें क्यों ये लोगों को दिखाना है कि हम खुश हैं? हम खुश हैं ये हमारे लिए काफ़ी है ना। तो यही हम कहना चाह रहे हैं। और जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
2: राधे राधे, सुखचैन से रहना है तो राधे राधे कहना है प्रीति जी।
1: हम तो सुखचैन से रहेंगे, राधे राधे राधे कहेंगे। मुरली जी स्वागत है आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप?
1: बस
2: बहुत आप... लंबा समय के बाद आए सो है, और आने के बाद हमारा बहुत ही आनंद दिए सो है आप।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने आप को ये ऊपर वाले से हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का, कि हमें आपकी खुशी का माध्यम वो बना रहा है।
2: थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट, हम भी ऐसे आपसे भी हम लिए ऐसे, उसके वजह से थैंक यू कह रहा हूँ मैं। और एक छोटी सी कंप्लेंट भी है आपसे।
1: बताइए।
2: अरे ज्ञान चंद जी को सिर्फ नाम से ही ज्ञान दिया सो है, या मन से या दिमाग से भी उनको ज्ञान दो, एक बार तो दो। हमेशा हमेशा श्रीमती ज्ञान चंद जी ज्ञान ज्ञानमती बना दिए, तो ज्ञान चंद जी कब ज्ञान बनेंगे?
1: ऐसा है क्या?
2: अब
1: वो तो देखिए, मैंने कहा ना, जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते, तो मैं इसमें क्या करूं।
2: प्रीति जी, आज जो टॉपिक लिए आज, जो भगवान अपने को दिए सो सिर्फ संतोषी
1: जी,
2: मतलब सुखी दिया
1: जी,
2: दुख नहीं दिए सो उन्होंने अपने जिंदगी में।
1: बिल्कुल,
2: अपन दिखाने के वास्ते, जो सुख दिखाने के वास्ते ढूंढ रहे और दुख मांग के लेके आ रहे।
1: एक्चुअली क्या हो जा रहा ना मुरली जी, कि हम सुखी दिखाने के चक्कर में हम दुखी हो जा रहे हैं। लोगों को हम सुखी हैं ये दिखाने के चक्कर में हम दुखी हो जा रहे हैं।
2: और एक बात कहता हूँ मैं प्रीति जी, भगवान इंसानों को कई की दिया बोले तो इंसानों से प्यार करो, और वस्तुओं को क्यों दिया बोले तो उसको इस्तेमाल
1: करो, उसका उपयोग करो। हम इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
2: इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं को
1: प्यार कर रहे हैं।
2: तो फिर क्या क्या दिखता अपने को? सुखी बनावट का सुखी दिखाना पड़ता और दुखी खरीद के मन में ला के रखना पड़ता।
1: बहुत सही कहा मुरली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: इसी खुशी में एक सॉन्ग भी हो जाए प्रीति जी।
1: जरूर जरूर, सारे सॉन्ग आप ही के लिए हैं।
2: नहीं, सुख के वास्ते अपन बात कर रहे तो ऑल इज वेल का सॉन्ग तो होना ही होना है।
1: क्या बात है, क्या बात।

करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे हम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो साथियों ये थे मुरली जी, और हम पूरी कोशिश करेंगे साथियों आप सभी के गीत आप तक पहुंचाने की, क्योंकि देखिए समय का पहिया हमें यहाँ से ज़्यादा आगे जाने के लिए इजाज़त तो नहीं दे रहा है, और सारी फरमाइशें आप तक नहीं पहुँचा पा रहे, इसके लिए हमें खेद भी है और हम क्षमा प्रार्थी भी हैं उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैसेजेस भी बहुत सारे हैं, फरमाइशें भी बहुत सारी हैं, पर पूरी कोशिश है कि हम जो है आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचा सकें। और एक प्यारा सा गीत हमारे सोल्जर्स के लिए जैसे रिक्वेस्ट किया गया था, उसी की ओर बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: देखा साथियों, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि हम तुम में जिएंगे, अपना हर रिश्ता आप में, वो हम हमारे सोल्जर्स हम में जीते हैं, ये बात है। और ये अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और चलिए लास्ट कॉलर से, यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, उनसे बात करते हैं। हेलो रेनबो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम जी। मैं
0: नमस्कार।
1: कीर्ति राजकुमार आदर्श नगर निजामाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: निजामबाद से कीर्ति राजकुमार जी आदर्श नगर से, जी बताइए, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में है, बढ़िया है
0: जी।
1: एकदम बढ़िया मैडम जी। मेरा एक नवासा है ग्रांड।

0: एडिक्शन वो वन ईयर का ओल्ड है. उनको टीवी पर मिसाला पिल्ला बोल के ये गाना आता, वो लगा के छोड़ दिए तो खत्म. उन नाचते रहता, उनके साथ अपन भी नाचना,
1: खुश हो जाते हैं. बहुत सही बहुत सही कहा आपने.
0: एक पैसा खर्चा नहीं होता,
1: नहीं होता है, नहीं होता है. और ये खुशी अपनी, और ये खुशी हम एक्चुअली लोगों को, हम सही में क्या है वो मायने हम बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट चीज होती है वो शब्दों में बयां कभी होती ही नहीं है. बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और साथियों, फिलहाल हम इसी वादे के साथ विदा लेते हैं कि पुनः बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे. और ये आप ही में से आप ही की फरमाइश, आप ही के लिए. स्टे ट्यून्ड.

101.9. ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, अभी तक आप सुन रहे थे मेरी दोस्त साहिती चंदना को। इस रेडियो की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं, वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: गाड़ियां चलाओ।
1: समय बज़्म को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मतसेल हमें जानो सिलसिले के तहत तकरीर बउनवान नॉवेल निगारी। तहरीर वो पेशकश है मोहतरमा डॉक्टर नसरीन सिद्दीका की। समाप्त कीजिए।
2: ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू अदब की असनाफ में नावल एक ऐसी सिन्फ है जिसने सबसे ज़्यादा उसअत, गहराई और फ़िक्री पुख्तगी हासिल की। नावल महज खिस्सा नहीं, महज तफरी नहीं, बल्कि ये एक अहद का शऊरी और फ़िक्री इजहार है। ये इंसान की दाखिली ज़िंदगी और ख़ारिजी हालात दोनों को एक मरबूत फ़नी साख्त में पेश करता है। अगर हम उर्दू अदब की क़दीम रिवायत का जायज़ा लें तो हमें सबसे पहले दास्तान का सरमाया मिलता है। दास्तान दरअसल क़िस्सा गोई की वो सिन्फ है जिसमें माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर, तिलस्माती फ़िज़ा, गैर मामूली किरदार और हैरत अंगेज़ वाक़यात होते थे। दास्तान का हीरो आम इंसान नहीं होता था, बल्कि वो फ़ौकुल फ़ितरत सलाहियतों का हामिल होता था। वो एक ही वक्त में कई दुश्मनों को शिकस्त दे सकता था, तिलसिम तोड़ सकता था, जादू का मुकाबला कर सकता था। दास्तान का मकसद ज़्यादातर तफरीह, हैरत और दास्तानी लज्जत पैदा करना होता था। इसमें हकीकत निगारी या समाजी तजिए का उनसर बहुत कम होता था। किरदार नफ्सियाती पेचीदगियों से आरी होते थे। वो या तो मुकम्मल अच्छे होते थे या मुकम्मल बुरे। इसके बरअक्स नावल एक ऐसी सिन्फ के तौर पर सामने आया जिसने ज़िंदगी को इसकी हकीकत के साथ कबूल किया। नावल में किरदार आम इंसान होते हैं। वो गलतियाँ करते हैं, उलझते हैं, शिकस्त खाते हैं और ज़िंदगी के तजाद से गुज़रते हैं। नावल का हीरो भी कमज़ोर हो सकता है, नाकाम हो सकता है, हत्ता कि शिकस्त खा सकता है। नावल में फ़नी वहदत और रब्त ज़रूरी होता है। नावल हकीकत का फ़नी इजहार है। उर्दू नावल की इब्तिदा 19वीं सदी के समाजी वो सियासी पस मंज़र में हुई। बर्रसग़ीर में अंग्रेज़ी इख्तदार क़ायम हो चुका था। नई तालीम, नए इदारे, नए समाजी इख्तियार सामने आ रही थीं। मुसलमान मुआशरा ज़वाल का शिकार था और इस्लाही तहरीकें ज़ोर पकड़ रही थीं। इसी माहौल में डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपना नावल तख्लीक़ किए। इनके नावलों का बुनियादी मकसद माशरती इस्लाह था। इन्होंने घरेलू ज़िंदगी, तालीम निस्वां और मजहबी तरबियत जैसे मौजूआत को इख्तियार किया। इनके नावलों में फ़नी पुख्तगी कम और इस्लाही जज्बा ज़्यादा नुमाया है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इन्होंने दास्तान की रिवायत से हटकर एक मरबूत नसरी बयानिया तश्कील दिया। रतननाथ सरशार के यहाँ हमें ज़ुबान की शगुफ्तगी और शहरी ज़िंदगी की भरपूर तस्वीरें मिलती हैं। इन्होंने लखनऊ की तहजीब, वहाँ के आदाब, महफिलें, तर्ज़ गुफ्तगु और मुआशरती रवैये को महफूज कर लिया। अगरचे इनके यहाँ दास्तानी असरात मौजूद हैं, लेकिन किरदार के जुज़ियात निगारी इन्हें नावल के करीब ले आती है। अब्दुल हलीम शरर ने तारीख़ शऊर को ज़िंदा किया। इन्होंने माजी की बाज़याफ्त के ज़रिए मुसलमानों में खुद एतमादी पैदा करने की

0: तौर पर देखें तो उर्दू नावल का सफ़र तीन बड़े मराहल से गुज़रा है। पहला मरहला इस्लाही और इब्तदाई तश्कील, दूसरा मरहला हकीकत निगारी और समाजी शऊर, तीसरा मरहला फ़िक्री गहराई और जदीद तजुर्बात। ये तीनों मराहल मिलकर उर्दू नावल की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। उर्दू नावल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसने ज़िंदगी को इसकी पेचीदगियों समेत कबूल किया। इसने न सिर्फ मसाइल को दिखाया बल्कि इंसान की दाखिली जिद्दोजहद को भी बयान किया। नावल महज तफरी का ज़रिया नहीं बल्कि फ़िक्री तरबियत का वसीला भी है। ये क़ारी को सोचने, सवाल करने और अपने अहद को समझने का मौका देता है। ख़वातीनों हज़रात, अगर हम उर्दू नावल के इस तवील सफ़र पर नज़र डालें तो हमें एक वाज़ह इरतकाई तसलसल दिखाई देता है। क़िस्सा गोई से शुरू होने वाला ये सफ़र समाजी शऊर तक पहुँचा, फिर नफ्सियाती गहराइयों तक गया और अब तहजीबी और फ़िक्री मुकालिमे की सूरत इख्तियार कर चुका है। उर्दू नावल ने साबित किया कि अदब जामद नहीं होता, वो ज़िंदगी के साथ चलता है, ज़िंदगी से सीखता है और ज़िंदगी को माने देता है। आज भी हम किसी अच्छे नावल को पढ़ते हैं तो हमें अपने अहद की झलक नज़र आती है। हम अपने मसाइल, अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब और अपनी शिकस्तें इसमें पहचान लेते हैं। यही नावल की कामयाबी है, यही इसका फ़न है और यही इसका इर्तिखा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि उर्दू नावल न सिर्फ हमारी अदबी रिवायत का अहम हिस्सा है बल्कि हमारी तहजीबी शिनाख्त का भी अमीन है। ये माजी को हाल से और हाल को मुस्तकबिल से जोड़ने का ज़रिया है। इसी शऊर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: अभी आप समाप्त कर रहे थे मतसहल हमें जानो सिलसिले के तहत तकरीर बउनवान नॉवेल निगारी। प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 14 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामाईन सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नैरन में। समय आज 12 अगस्त है। जी हाँ, ये दिन बैन अल-अक़वामी यौम नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। किसी भी कौम या मुल्क का असासा और उसका मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं। नौजवान वो ताकत है जो अपनी तवानाई, जोश और जज्बों से दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। इसी अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को बैन अल-अक़वामी यौम नौजवानान या नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे और मुल्क की तामीर व तरक्की में नौजवानों के कलीदी किरदार को सराहना और उनको दरपेश चैलेंजेस की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जे मबजूल कराना है। इसी बात पर मुझे अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आ गया। जी हाँ, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नौजवानों के लिए एक मखसूस दिन मनाने की तजवीज़ जो

पहली बार 1991 में ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मुनक्किदा वर्ल्ड यूथ फोरम में दी गई थी। इसके बाद अक्वामे मुतहदा की जनरल असेंबली ने दिसंबर 1999 में सरकारी तौर पर इस तजवीज़ को मंजूर किया और 12 अगस्त 2000 को पहली मरतबा बैन अल-अक़वामी यौम नौजवानान बाकायदा तौर पर मनाया गया। तब से लेकर आज तक ये दिन हर

दोस्तों, नौजवान नस्ल किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसा इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है और वो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करती है, ठीक उसी तरह नौजवान नस्ल भी हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है, यानी कि शाहीन से जो नौजवान है उनको शाहीन से तशबीह देकर बताया है, जो बुलंद परवाज रखते हैं और अपनी दुनिया खुद पैदा करते हैं। तो इकबाल के नज़दीक नौजवान ही वो ताकत है जो मुल्क वो कौम को जवाल से निकाल कर उरूज की तरफ ले जा सकती है। आज की डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी, साइंस, खेल, सियासत और मईशत का कोई भी शोभा हो, नौजवान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। जी हाँ, बेशक नौजवान ही मुल्क का असर सरमाया होते हैं। समय बज में होगी और भी बातें, आइए सुनते हैं अगला गीत।

तो दोस्तों, आज 12 अगस्त है और इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में हम बात कर रहे हैं। माशरे की तरक्की का जो दारोमदार है वो नौजवानों पर होता है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। अगर किसी मुल्क के नौजवान पढ़े लिखे हैं और मेहनती हैं तो वो मुल्क बहुत जल्द तरक्की कर भी लेता है। जी हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो हमें अपने नौजवानों का साथ देना होगा। इसके लिए हमें नौजवानों को सस्ती और मेयारी तालीम और तालीम के जाने बहुत ज़्यादा उन्हें मुतवज्जे करना होगा। उन्हें कंप्यूटर, आईटी और दीगर तकनीकी हुनर सिखाने होंगे। इनके लिए रोज़गार के नए और बेहतर मौके भी पैदा करना होगा। बैनुल अक्वामी यौम नौजवान हमें ये याद दिलाता है कि नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, नौजवानों को चाहिए कि वो बुराइयों से दूर रहे, अपनी तालीम और हुनर पर तवज्जा दें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जब नौजवान मजबूत होंगे तो पूरा मुल्क मजबूत होगा। सुनते हैं अगला गीत, फिल्म थ्री इडियट्स से लिया हुआ, जिसके बोल है ऑल इज वेल।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज़ की घड़ी में 10:10 हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे पर। जी हाँ, बैन अल-अक़वामी यौम नौजवानान महज तकरीबात या सेमिनार मुनक़िद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये अमली अकदामात का दिन है। नौजवान को अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब नौजवान बाइख्तियार तालीम याफ्ता और हुनरमंद होंगे तो दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता।

0: समाइन, अभी आप सुन रहे थे 12 अगस्त यानी इंटरनेशनल यूथ डे पर चंद अहम बातें FM 101.9 MHz पर। समाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:16 और 45 सेकंड हो चुके हैं। नए रंग के इस बज्म को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा।
1: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर

0: एक्सीडेंट आप भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे हैं। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
1: समय गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत हम इसमें आपको पुराने हिंदी फिल्मी गीत सुनाएंगे और साथ ही साथ हमदर्दी और इंसानियत जैसे मौजूद पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, हमदर्दी एक बहुत अच्छी और प्यारी आदत है। इसका मतलब है दूसरों के दुख और तकलीफ़ को महसूस करना और उनकी मदद, यानी जब भी उनको ज़रूरत हो उनकी मदद करना, क्योंकि इंसान एक दूसरे की मदद करने के लिए ही पैदा किया गया है। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए प्यार और रहम होता है उसे सब पसंद करते हैं। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब, कुछ लोग सेहतमंद होते हैं और कुछ बीमार। जब हमारा कोई दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार किसी मुश्किल में हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। कभी कभी किसी परेशान इंसान को देखकर मुस्कुरा देना ही या फिर उसका हाल पूछ लेना भी उसका गम कम कर देने के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया में हर तरफ उदासी फैल जाएंगी। तो हमें चाहिए कि हमें अतराफ व अकनाफ हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए उदासी को दूर करना है और हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाना है। तो बज़्म में होगी और भी बातें हमदर्दी और इंसानियत से मुतालिक। ये सुनते हैं ये गीत पंकज उदास की आवाज़ में।

हमदर्दी और इंसानियत का आसान मतलब है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उनकी मदद करना। इंसान सिर्फ अच्छा लिबास पहनने से इंसान नहीं बनता, बल्कि उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार और एहसास का होना बहुत जरूरी है। इंसानियत क्या है? इंसानियत का मतलब है सिर्फ दूसरों की तकलीफ को देखकर दिल में तड़प पैदा होना ही इंसानियत है, एहसास का होना इंसानियत है। अगर हम दूसरों का एहतराम करते हैं, जैसे कि अगर हम हर छोटे बड़े अमीर और गरीब की इज्जत करना जानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम में इंसानियत है। किसी फायदे के बगैर दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना भी इंसानियत है। अगर हम हमदर्दी की बात करें, तो हमदर्दी का जज्बा जो है वो मदद का जज्बा होता है। जी हाँ, हमदर्दी किसी को भूखा देखकर खाना खिलाना या किसी परेशान हाल की बात सुनकर उसका हौसला बढ़ाना ही हमदर्दी है। गुस्से और कड़वाहट के बगैर सबसे मुस्कुराकर और प्यार से मिलना भी हमदर्दी है। दूसरों की गलतियों को माफ करना और दिल में कीना ना रखना भी हमदर्दी है। ये क्यों जरूरी है? जी हाँ, ऐसा करने से हमें सबसे पहले तो सुकून मिलता है। अगर हम दूसरों को माफ करते हैं तो हमको ज़हनी सुकून मिलता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अपने ही दिल में एक सच्ची खुशी मिलती है। अगर सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और मौशरा खुशहाल रहेगा। दोस्तों, हमदर्दी और इंसानियत से मुतालिक और भी बातें हम आपको सुनाएंगे इस गीत के बाद। ये गीत लिया गया है फिल्म सौतन से, जिसके बोल हैं, जिंदगी प्यार का गीत है।

है लोग वही जहाँ में अच्छे, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जी हाँ, हमदर्दी और इंसानियत उन्वान पर हम बात कर रहे हैं, और इसी मौजू के तहत मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि एक दफ़ा एक गरीब बच्चा भूख की वजह से एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है और सिर्फ एक गिलास पानी मांगता है। उस घर से एक औरत उसकी हालत को देखकर पानी की जगह दूध का एक बड़ा गिलास दे देती है। बरसों बाद वही औरत सख्त बीमार हो जाती है और अस्पताल पहुंचती है। जब वो ठीक होती है तो बिल देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि जो बिल की रकम थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन बिल पर नीचे लिखा होता है, आपका बिल बरसों पहले एक गिलास दूध के जरिए अदा किया जा चुका है। वो डॉक्टर वही गरीब बच्चा था जिसको इस औरत ने बरसों पहले एक गिलास दूध दिया था। तो ये इंसानियत का सिला जो घूम फिर कर वापस जरूर आता है। तो समय हमें एक दूसरे के साथ इंसानियत और हमदर्दी वाला मामला करना चाहिए, क्योंकि जो आज हम हमदर्दी करते हैं वही उसका सिला बरसों बाद हम तक जरूर लौट कर आता है। तो बस में होगी और भी बातें, आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत जो लिया गया है फिल्म स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ से, जिसके बोल है ये सूरत चांद सितारे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा, और हम बात कर रहे हैं हमदर्दी और इंसानियत के बारे में। जी हाँ, अगर आपके पास किसी को देने के लिए पैसे या तोहफा नहीं है तो उसे अच्छे अल्फाज और इज्जत दे दें, ये भी इंसानियत का सबसे बड़ा तोहफा है। इंसानियत के सामाइन 3 दर्जे होते हैं,

पहला दर्जा तो वो जिसमें किसी को अपने हाथ या जुबान से तकलीफ ना देना होता है, यानी अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना करें। इंसानियत का जो दूसरा दर्जा है वो है दूसरों की जरूरत और तकलीफ को देखकर आगे बढ़ना और अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद करना। जी हाँ, हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो हम कैसे किसकी मदद करें। हमारे पास जितना भी हो अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद कर देना भी इंसानियत के दूसरे दर्जे में आता है। और अगर तीसरे दर्जे की अगर हम बात करें तो वो है अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरों को तरजीह देना, जैसे खुद भूखा रहना और दूसरों को खाना खिलाना, ये भी इंसानियत का दर्जा है। हमदर्दी सीखने के लिए हमको अपनी अमली जो ज़िंदगी है उस पर कुछ चीज़ों को अमल में लाना होगा, तभी हमदर्दी और इंसानियत के जो जज्बात है वो तश्कील पाएंगे। जैसे कि हमदर्दी की जो शुरुआत है हमें अपने घर से करना चाहिए, अपने वालिदैन, बहन भाइयों और अपने लाइफ पार्टनर के थके होने पर उनके कामों में हाथ बटाना। अल्फाज का जो चुनाव है, समय अल्फाज का जो चुनाव है वो बोलने से पहले ये सोचना कि मेरे इन अल्फाज से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। इसके अलावा इंटरनेट पर किसी की तस्वीर या वीडियो का मजाक उड़ाना या फिर अच्छे और बुरे तबसरे करना, ये भी जो है हमदर्दी के जो अमली तरीक़े हैं उस पे आता है। अगर हम किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। जी हाँ, इंसानियत की जो असल इम्तिहान है, असल पहचान है, वो है कि तब पता चलता है जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता या जिससे आपको कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद भी ना हो। किसी कमज़ोर पर गुस्सा ना उतारना और ताकत होने के बावजूद माफ़ कर देना इंसानियत की सबसे आला मिसाल है। तो दोस्तों, हम और भी बातें करेंगे, आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

सामाइन, हमदर्दी करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें छोटे छोटे कामों के ज़रिए हमदर्दी कर सकते हैं। जैसे किसी अंधे या बूढ़े शख्स को जब भी हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे शख्स या फिर ज़यीफ कमज़ोर लोग दिखाई देते हैं तो हमें सड़क पार उन्हें करवा देना चाहिए। ये भी हमदर्दी की मिसाल है। और साथ ही साथ हम अगर कोई बीमार है तो उनका हाल चाल पूछ ले, भूखे अगर हो तो उन्हें खाना खिला दे, और अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी भी पिला देना भी हमदर्दी की ही एक आला मिसाल है। परिंदों और जानवरों के साथ उनको जो है दाना रखना, पानी रखना, ये भी हमदर्दी के ही तरीके हैं। जी हाँ, हमदर्दी ही सच्ची इंसानियत है। हमें चाहिए कि हम हमेशा दूसरों के काम आए और किसी का दिल ना दुखाए। जब हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो वही खुशियाँ दोस्तों वापस हम तक ज़रूर आएंगी। तो आइए अगला गीत

0: समय अभी आप समाप्त कर रहे थे गीत सुरीले गाता जा।
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 14 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामाई सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नहरंग में।
0: समय आइए बज़्म के इख्तिताम से कबल सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।
2: दामन झटक के वादिये गम से गुजर गया, उठ उठ के देखती रही गर्दे सफर मुझे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात या दुख आते हैं जो हमें बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन कामयाब वही शख्स होता है जो माजी के गमों में कैद नहीं रहता बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जाता है। जब इंसान अज़्म के साथ अपने दुखों से निकल आता है तो फिर उसके सफ़र की गर्द बाकी रह जाती है, गम इसे रोक नहीं पाता। गम को अपनी मंजिल बनाए, उसे रास्ते का एक मरहला समझें। जो बीत गया उसे बार बार पलट कर देखने के बजाय मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। इज्जत सुकून और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मायूसी के अंधेरों से निकलकर उम्मीद की रोशनी का इंतकाब करते हैं। जिंदगी का असल हुस्न यही है कि जख्मों के बावजूद इंसान अपनी मुस्कुराहट किरदार और हौसले को बरकरार रखे। जिंदगी में हर गम आरजी है, जो शख्स सब्र हिम्मत और यकीन के साथ आगे बढ़ता है एक दिन वही अपने माजी के दुखों को सिर्फ सफर की गिर्द की तरह पीछे छोड़ देता।

समय इसी के साथ आज की हमारी ये नैरन की बज्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तब तक अपना और अपने प्यारों का और उनका भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। कल इन्हीं मीटर्स पर 9:30 पर आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बारी बारी से नश्र किए जाएंगे। रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar. Market Mantra ke tazang ko lekar hum hazir hain. Hamesha ki tarah arthniti, karobar aur share bazaar se sambandhit taza khabron ke saath hum in par charcha bhi karenge aur charcha ke liye humne aamantrit kiya hai desh ke jaane mane varishth aarthik patrakar Siddharth Singh ji ko. Siddharth ji, namaskar. Karyakram mein aapka swagat hai.
2: Namaskar Manoj ji.
1: Aaiye shuruaat karte hain angrezi mein headline se jise lekar maujood hain Nishit Kumar.
0: The benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year.
1: घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स लगभग 200 अंक नीचे आया. निफ्टी 24,450 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. देश में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 4.45% पर पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा भू राजनीतिक तनावों के कारण इस वर्ष तेल की आपूर्ति और मांग में गिरावट होने के हैं आसार. ये भी कहा अगले साल बढ़ सकती है मांग.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही. प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 188 अंक यानी 0.24% नीचे आकर 77,966 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.15% नुकसान के साथ 24,436 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की गिरावट आई.
0: The benchmark domestic equity indices ended with modest losses today. The Sensex dipped 188 points or 0.24% to close at 77,966. The Nifty dropped 36 points or 0.15 to settle

0: at 24,436. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.3%, while the small-cap 100 index fell 0.2%. The markets opened on a weak note amid elevated crude oil prices and geopolitical uncertainties. The Sensex and the Nifty remained under pressure and witnessed broad-based selling. However, both indices pared their intraday losses during the last half an hour of trade.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर. सेंसेक्स पैक में आज 30 में से 21 कंपनियां घाटे के साथ बंद हुए. सबसे अधिक घाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ, जिसके शेयर 3.7% नीचे आकर बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% का और टाटा स्टील को 1.6% का नुकसान उठाना पड़ा. उधर मांग निकलने से भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 1.3% लाभ में रहे. भारतीय एयरटेल को 1.1% से अधिक का मुनाफा हुआ और अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम लगभग 0.5% से थोड़े से ऊपर आकर बंद हुए.
0: एंड इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन. अमंग द टॉप लूजर्स, हॉस्पिटल्स डिप 2.8%, आईटी लॉस्ट 1.4% एंड फोकस्ड आईटी फेल 1.5%. इन कॉन्ट्रास्ट, टेलीकम्युनिकेशंस क्लाइम्ड 1.9%, पीएसयू बैंक्स रोज 1.8%. Amid small private banks, quality tilt added over 0.8%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,867 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ. 95.33 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. एक और प्रमुख सूचकांक थोड़े से घाटे में दिखे हैं, जबकि विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख रहा है. एनएसई का मिड कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा लाभ के साथ बंद हुआ. क्या रुख दर्शा रहा बाजार?
2: नहीं, देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं अभी भी बाजार जो बड़ी जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो अमेरिका और ईरान की जो युद्ध के बाद जो अनिश्चितता बनी हुई, वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है. साथ साथ उसी की वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो

0: अभी पिछले हफ्ते जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंस की थी, तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड कर रहे हैं। आरबीआई को इस बात का अनुमान था कि जो ये मुद्रास्फीति या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, इसमें थोड़ा सा इजाफा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार ने हमारे जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक को जो टारगेट दिया है, वो 4% का टारगेट, महंगाई का टारगेट दिया है, और उसको वो बैंड और वो 2% ऊपर और 2% नीचे उस बैंड में उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ
1: जी
0: उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उनको ये भी इंश्योर करना है कि महंगाई दर के साथ साथ जो हमारी ग्रोथ है उसको भी वो बनाए रखें। और उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया था, क्योंकि चूंकि जब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था। और फूड इन्फ्लेशन जो कि तकरीबन 37%, अगर आप इंडेक्स का जो सीपीआई का जो इंडेक्स है उसका अगर आप देखेंगे, तो तकरीबन 37% जो है वो फूड जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उसकी वजह से, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम पीछे बढ़ाए गए थे, तो उसका असर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक ने भी इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको, हाँ, चिंता ज़रूर है, क्योंकि मानसून ख़राब है, तो और खास और साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइजेस का जो दबाव है वो बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये मानना है कि पूरे साल के लिए ये दिसंबर में जाके कहीं 5% के आसपास पीक करेगा जो हमारा महंगाई दर है, और पूरे साल 5% का एवरेज इन्फ्लेशन शायद उससे ऊपर ना जाए। तो इसलिए इस समय पे, और ये इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि हम जो मैंने पहले बोला, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो
1: जी
0: उसका
1: जी जी
0: बाकी चीज़ों पे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चाहे
1: जी जी
0: लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्ट हो। तो
1: जी
0: इसी वजह से, और सर उनको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो है ऐसा ना हो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो इसलिए अभी भी वो न्यूट्रल स्टांस सेंट्रल बैंक ने बना के
1: राइट।
0: रखा है।
1: इनफैक्ट इफ वी लुक एट द अपटेक इन द डेटा 4.4%, सो दैट इट हैज समथिंग आल्सो गॉट टू डू अ बिट विद द न्यू 2024 बेस ईयर सीरीज एज वेल, सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम यू नो दिस डेटा हैज कम व्हेन दिस 2024 बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस सीरीज हैज कम इनटू इफेक्ट,
0: निशित,
1: राइट?
0: एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज दिस वॉज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी, एंड
1: या
0: इट नाउ इट कैप्चर्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। इट गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इंडियन इकॉनमी, ऑल्सो द लेटेस्ट आइटम्स। लॉट ऑफ
1: एब्सोल्युटली
0: ऑब्सलीट
1: एब्सोल्युटली
0: आइटम्स वर डिस्कार्डेड।
1: राइटली सो। यस, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कमोडिटी बाजार से जुड़े सभी पक्षों से घरेलू बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय मानक और गुड डिलीवरी मानक विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्य रूप से वैश्विक मानकों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। मुंबई में आज आयोजित ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की को कीमतों का पता लगाने और जोखिमों के प्रबंधन में कितना प्रभावी मदद करता है। सेबी कमोडिटी सूचकांकों और भौतिक रूप से निपटाए जाने वाले गैर कृषि कमोडिटी अनुबंधों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की व्यापक भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहा है। एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई की भागीदारी को लेकर सेबी ने कल एक परामर्श पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कृषि जींसों के लिए पोजीशन लिमिट पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त से सेंसेक्स और एनएसई में कीमतों के अंतर में काफी कमी आई है। इसके पीछे प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा सांकेतिक सेटलमेंट कीमतें प्रदर्शित करने सहित कई उपायों का योगदान रहा है। यहाँ पर ध्यान यानी प्रतिक्रिया तो हम पूरी खबर पर आपका चाहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो कमोडिटी सेगमेंट में एफपीआई के आने की चर्चा चल रही है, वह किन उद्देश्यों के लिए और क्या क्या लाभ इसके दिख सकते हैं?
0: जो बात वो कह रहे हैं वो शायद नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स की
1: जी
0: बात कर रहे हैं मनोज जी,
1: जी
0: और आज भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो केवल कैश सेगमेंट में निवेश करते हैं। अब जो जो नया डिस्कशन पेपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया

0: ने जो पब्लिक डोमेन में डाला है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि फिज़िकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव, जो कि जैसे सोना चांदी हो या आपके प्रेशियस मेटल्स हों या आप क्रूड ऑयल वगैरह की जो होगी, उसका फिज़िकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव सेगमेंट में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो है उनको अलाउ करने की बात है। और उसके पीछे बेसिक कारण एक ये है कि इससे एक तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी हमारी बाज़ार में, साथ साथ जो हमारी बाज़ारों का इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा, क्योंकि विदेश की जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनको जो है किसी भी विदेशी निवेशक को फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स में भी अलाउ किया जाता है।
1: Right, and moving on to some other stories. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Replying to a discussion, Mr. Mohol said that through this bill, the welfare and economic empowerment of crores of farmers across the country will be strengthened. And in some other story, the global oil supply is expected to fall by 4.3 million barrels per day, that is BPD, to 102 million BPD this year, as renewed hostilities in the Middle East and maritime disruptions in July and early August undermine the recovery efforts. According to the International Energy Agency's oil market report, global oil supply rose by 2.4 million barrels per day in July, but remained 6.3 million BPD below the pre-war levels. It added that the supply is expected to rebound by 8.3 million barrels per day next year. The IEA expects global oil demand to contract by 1.6 million barrels per day this year, as the ongoing closure of the Strait of Hormuz and elevated fuel prices continue to weigh on oil consumption. It said that the demand is projected to expand by 2.4 million BPD, that is barrels per day, in 2027. Siddharth, we'd like to have your comment on this, because the West Asian crisis doesn't seem to get over anytime soon. It's on one day off the other day. So now, with this oil supply expected to fall by 4.3 million barrels, that is quite some data, to 1.2 million barrels per day. How do you see this?
0: Nishit, obviously this would impact the growth, the world growth also, and the obviously the two big reasons are obviously the disruption of the supply, the way the routes are impacted, especially the Strait of Hormuz, and there's still no clarity how it how far and how soon it will end. Plus, the other reason is also the price of crude oil going up. Obviously, that also brings down the demand. So that also is also leading to the fall in demand. Not only the supply, the demand is coming down because of the supply, but also because of the prices going up.
1: राइट,
2: यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे इस चीज को कि तेल की मांग घटना इस वर्ष क्या कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के थोड़े घटने के आसार व्यक्त कर रहा क्या?
0: नहीं मनोज जी, देखिए अगर एक बात हम लोग निश्चित तौर पे समझ लें कि क्रूड ऑयल एक बहुत बेसिक वो है,
2: कमोडिटी
0: एक कमोडिटी है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एक बेसिक जिसको ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, किसी भी सामान, केमिकल सेक्टर, तो जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो उस सेक्टर में जहाँ चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, या किसी तरह के जो जो सामान जो मैन्युफैक्चर होंगे तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो या तो कंपनी एब्जॉर्ब करें या पास ऑन करेंगी, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ साथ उसकी सप्लाई भी घट रही है या
2: बिल्कुल,
0: अनसर्टेन है, डिसरप्शन हो रहा है। हमने भी जैसे कि बहुत तेज़ी से हम लोग तकरीबन 19 देशों से इंपोर्ट करते थे जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू नहीं हुई थी, अब आज हम करीब करीब 40 देशों के से ज़्यादा हम अपनी क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं, प्लस अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसको थोड़ा उसमें बदलाव किया है, तो उससे हम अपने को मैनेज कर रहे हैं।
1: Yeah, and the global crude oil prices were displaying mixed trend today. The Brent crude was trading 0.2% down at $88.71 per barrel in the intraday trade.

0: The West Texas Intermediate crude was trading marginally up at $82.24 per barrel when reports last came in. Quick comments, Siddharth. Where do you see the crude going from here?
1: Nishit, I think it's very difficult to say. This is a question, one question I think which nobody would be able to answer. But yes, as long, because we saw it falling in 15 days back, it had almost come below $80. Yes. But again, it has shot up because of the uncertainty.
0: More than that, Siddharth, if I'm not wrong, it came down to around 70 even.
1: Yeah, 70. That's why I said below 80.
0: Yes.
1: And now
0: again,
1: inching up to $90.
0: Yes,
1: so I think it all depends on what shape the peace talks take and what is the kind of peace which is reached. Because each time they enter into an agreement, it breaks the next day.
0: Correct.
2: आइए आपको लिए चलें सर्राफा बाजार, वहां से भी समाचार चमक तेज होने के हैं, यानी तेल के साथ सोने चांदी की चमक भी तेज हो रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.4% की बढ़त के साथ 1,53,419 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 0.8% बढ़कर 2,37,214 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप दोनों का भी धन्यवाद।
0: थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत आपके लिए, स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बम्बई का बाबू से, आइए सुनें।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है गीत मेरे मन में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनुराग से, लता मंगेशकर की आवाज में। ये रहा आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अंजू आ गई हैं स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर, तो आप जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड चैनल से और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के लिए। फिलहाल आइए इस चैनल पर अब सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले मंजूरी दे चुकी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारा सफर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो खुशबू है फिजाओं में, तुम्हारे होने से ही आबाद है ये जहां, वरना वरना क्या रखा है इन खाली हवाओं में।

मेरी सांसों में शामिल हो, तुम मेरी सांसों में शामिल हो, सांसों में मेरा तुम्हारा ही नाम है, तुम हो तो इस दिल को सहारा भी तुम्हारा ही है।

इस दिल का क्या करें जो कहीं लगता नहीं, तेरे सिवा इसे और कोई जचता भी नहीं। यूं तो महफिलें सजी हैं चारों तरफ, पर तेरे बिना यहां मुझे कुछ दिखता नहीं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तेरे संग ही देखे हैं मैंने सारे सपने, अब तो इस दिल में बस तुम ही लगते हो अपने। तू साथ हो तो हर मुश्किल बहुत आसान लगती है, वरना वरना तो ये तन्हाइयां भी हर पल आती हैं हमें डसने।

छेड़ो प्यार की कोई दास्तान, मैं सुनती रहूं और थम जाए ये जहां, बस तुम हो मैं हूं और हो मोहब्बत की बातें, इस हसीन पल में खो जाए हमारा दिल और जान।

खफा होते हो हमसे इस कदर तुम? क्यों खफा होते हो हमसे इस कदर तुम? तुम्हारी बेरुखी से थम जाता है मेरा सफर। माना कि गलती अनजाने में हो जाती है, पर तुम्हारे बिना अधूरा है मेरा दिल और मेरा घर।

करीब आओ कि तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं, करीब आओ कि ये दिल तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं, कि कोई और चेहरा अब इन आँखों में जचता नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है।

दोस्तों, ये सफर तो अभी यूं ही चलता रहेगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 1:11 और 27 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ, दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ कि अब तो आ जाओ कि कटती नहीं ये रातें तेरे बिन।

जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, लगता है जैसे पूरी कायनात आ गई हो मेरी बाहों में।

तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है, तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है, इसलिए यूं ख्वाबों में नहीं तुम हकीकत में मिला करो हमसे।

देख लो तड़पा कर भी हमको, देख लो तड़पा कर भी हमको अगर सुकून मिलता है तुम्हारी खुशी की खातिर, हम वो दर्द भी सह लेंगे।

चांदने बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, चांदने बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, कि आप ही जाओ यह हसीन रात मुकम्मल हो जाए हमारे लिए।

जुबान खामोश है पर आंखों में तेरा ही इंतजार है। जुबान खामोश है मगर आंखों में तेरा ही इंतजार है। सुन सको तो सुनो, ये दिल सिर्फ तुम्हें ही पुकारता है।

कदम तुम्हारे साथ चलें तो हर राह मुस्कुराती है, कदम तुम्हारे साथ चलें तो हर राह मुस्कुराती है, और ये जिंदगी तुम्हारे संग एक खूबसूरत गजल बन जाती है।

0: ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा हसीन साथ। ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा ये हसीन साथ। दिल तो चाहता है कि यहीं ठहर जाए ये जिंदगी और ये रात।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था और ये सफर यहीं खत्म होता है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय

0: सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 18 आतंकियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के अनुसार सुराब जिले में आतंकी विस्फोटकों से लदी गाड़ी तैयार कर रहे थे, इसी दौरान विस्फोटक समय से पहले फट गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों और बलूचिस्तान पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गेब्रियासिस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रकोप अब तक का सबसे घातक इबोला प्रकोप बन सकता है। कांगो में अब तक 4,300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रहिए इस घंटे मेरे साथ और सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत नगमे। चलो बैठें कहीं इस दुनिया की नजरों से छुपकर, चलो बैठें कहीं दूर इस दुनिया की नजरों से छुपकर, कि इस दिल को जीना है हर एक लम्हा बस तेरे संग ही।

वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, आज भी इस दिल में एक हसीन कसक बनकर उभरती है।

वो प्यार था या नहीं, ये तो मुझे आज भी पता नहीं। वो प्यार था या नहीं, ये तो मुझे आज भी पता नहीं। पर जो एहसास तुमसे था, वो किसी और से कभी हुआ ही नहीं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, अंजू है आपके साथ।

क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है, क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है, तेरे साथ जीने के सिवा अब इसकी कोई चाहत भी नहीं।

तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं, तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं कि अब आईना भी देखें तो सिर्फ तेरा ही चेहरा नजर आता है।

नींद टूट गई है इन आंखों से जब से तुम दूर गए हो। नींद तो उड़ गई है इन आंखों से जब से तुम दूर हुए हो। अब तो बस जागती निगाहों को तुम्हारे आने का इंतजार रहता है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत था, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। स्टूडियो में भारती आ चुकी हैं और अगला कार्यक्रम लेकर, कार्यक्रम होगा हमराही जो 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जल्द मिलूंगी, शुभरात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।

है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और

कभी कभी एक नजर ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। जहां एहसास सच्चे हों वहां शब्दों से ज्यादा आंखें बोलती हैं।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ चलने वाला अपना हो। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वह रास्ता होता है जो किसी अपने के साथ तय हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्यार वो एहसास है जो बिना आवाज दिए दिल की दुनिया बदल देता है। एक सच्चा साथ पूरी जिंदगी को मुस्कुराने की वजह दे देता है।

मोहब्बत का जादू किसी तिलिस्म से कम नहीं होता। जिस दिल में प्यार बस जाए, जिस दिल में प्यार बस जाए, वहाँ हर पल एक नई खुशी जन्म लेती है।

इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, तो खामोशी भी गजल बन जाती है।

प्यार में दीवानगी तब खूबसूरत लगती है जब उसमें भरोसा और अपनापन शामिल हो। सच्ची मोहब्बत हर धड़कन को एक मीठी धुन में बदल देती है।

समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से

0: जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेवल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the neat paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म आखिरी खत के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार खयाम, गीतकार कैफी आजमी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार ओपी नायर, गीतकार साहिर लुधियानवी।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हजार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। और इस प्रोग्राम में को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शर्मिली से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में, गीतकार मनोज कुमार, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सीता और गीता से मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आंचल से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार सी रामा चंद्रा।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम भूर सुहानी में। तब तक ले रही हूँ आपसे विदा और छोड़ कर जा रही हूँ प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म हम साथ साथ से, फिल्म हम साथ साथ हैं। कविता कृष्णमूर्ति, अलका यांग ने अनुराधा पोटवाल, कुमार सानू, उदित नारायण और हरिहरन की आवाज में, गीतकार आर किरण, संगीतकार राम लक्ष्मण। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है, इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर माथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है, ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का

उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि केरल विधानसभा 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरलम करने का अनुरोध किया था। मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान में इसे केरल लिखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद भवन परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा रोड ओवर अंडरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उधर नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

हर सुबह हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नई सुबह अपने साथ नई ऊर्जा, नए अवसर लेकर आती है। बस हमें खुले मन से उनका स्वागत करना है।

नया सवेरा केवल सूरज के निकलने का नाम नहीं, बल्कि नई सोच, नए संकल्प और नई शुरुआत का नाम है। कल की गलतियों से सीखिए, आज को बेहतर बनाइए और आने वाले कल को उज्जवल बनाने की कोशिश कीजिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।